नमस्कार, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 14 तारीख, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं।

107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों बाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का पूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में

0: बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वंदन वार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से भरा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

107.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब आपको आज झरोखा में बता दे कौन कौन से कार्यक्रम आप इस फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं।

सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर पेश किया जाएगा। हम है राही प्यार के कार्यक्रम। 8 बजे देश और दुनिया का ताजा हाल जानेंगे समाचार प्रभात में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुन सकते हैं त्रिवेणी कार्यक्रम। 8:30 प्रवेश किया जाएगा चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 का समय रहेगा आज का अखबार कार्यक्रम का। 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। पर हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम पेश किया जाएगा और आज विषय है स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादें। 11 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम यादों का कारवां और 11:30 पर फिल्म संगीत पेश किया जाएगा।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता कार्यक्रम, जिसमें आज श्रृंखला में शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका आप जान पाएंगे। ये होगा उसका भाग 5। सुबह 7 बजे आप

0: दोपहर 12 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 12:05 का समय रहेगा यादों की महफिल कार्यक्रम का। 1:05 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक हिंदी समाचार। 1:10 पर पेश किए जाएंगे प्रादेशिक पंजाबी समाचार। एक बजकर 15 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 1:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर का। 2 का समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार। 2:30 पर आप सुन सकते हैं सदाबहार नगमे। 3:00 आज आप सुनेंगे मन चाहे गीत। 3:30 पर आज नाट्य तरंग में आप सुनेंगे नाटक मालविकाग्नि मित्र का भाग 2। 4:00 आज कार्यक्रम पिटारा में उजाले उनकी यादों के, उसमें आप सुनेंगे रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3। 5:00 हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 5:05 पर फिल्म संगीत पेश किया जाएगा। 5:20 का समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का। और 5:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। शाम 6:00 हिंदी समाचार पेश किए जाएंगे। 6:05 पर फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत का आप आनंद उठा सकते हैं। 6:10 का समय रहेगा प्रादेशिक हिंदी समाचार का। 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार पेश किए जाएंगे। 6:30 का समय रहेगा अमृत वाणी का। 7:00 आप सुनेंगे विशेष जयमाला कार्यक्रम में सैनिकों की शौर्य गाथा। 7:45 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। 7:47 का समय रहेगा पंजाबी गीत का। 8:00 आप सुन सकते हैं कार्यक्रम हवा महल। चित्रलोक कार्यक्रम का समय रहेगा 8:15। समाचार संध्या 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं। 9:00 का समय रहेगा कार्यक्रम आपके लिए आज के फनकार कार्यक्रम। ये आप सुन सकते हैं 9:30 पर, जो कि केंद्रित रहेगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर प्रादेशिक मुख्य समाचार पेश किए जाएंगे। और 10:32 पर सुर सांझ कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हैं वो तमाम कार्यक्रम जो आज आप 107.2 MHz पर सुन सकते हैं। अब वक्त है श्री रामचरितमानस पाठ का। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस पाठ विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने रामचरितमानस गान भाग 240।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पांवरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
1: हाँ।
2: क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी।
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल।
2: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
1: क्या बात है।
2: तो बंबई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है।
1: जी।
2: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था।
1: जी।
2: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे।
1: जी जी।
2: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की।
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
2: बॉम्बे से।
1: मुंबई से।
2: हाँ
1: जी।
2: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला। मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
1: क्या बात है। वाह।
2: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ। सुनो, बड़ा अच्छा बजा दे जरा मेरे पास। हाँ हाँ। वो तो सूरदास थे।
1: जी जी।
2: तो हाँ, बड़ा अच्छा बजाता है। हाँ, कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
1: जी जी।
2: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए।
1: हाँ।
2: 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम।
1: जी जी।
2: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाए तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर हैं। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
1: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है, और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: वो कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे।
1: किशोर दादा।
2: किशोर दादा गा रहे थे।
1: क्या बात है।

0: पे ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने।
1: जी
0: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने, इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो।

0: इंस्ट्रूमेंट्स,
1: जी,
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशाना ही बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू। इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं,
1: जी
0: पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर।
1: जी,
0: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं, ये भी मेरे सामने मोटा है,
1: जी,
0: इतना पतला। आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ, बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
1: अरे
0: मैंने बोला मैं खाता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास ना तो की शरीर रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था, मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो,
1: जी,
0: मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था, और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए।
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से, और 140 रुपए पेमेंट था, जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। दुखी बाबू मुझे ले गए, और पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया, और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है, और 100-piece ऑर्केस्ट्रा, और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह, और चेलो, और डबल बेस, अपराइट बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं, वो डबल बेस वही लोग बजाते थे, क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था।
1: जी जी।
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे, देख किसको लाया हूं। तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तब हरि जी भी नए थे, और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं,
1: जी जी।
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूं मैं पंचम दा। वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है, ले गए, और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिस? आमी बोललाम हाँ दादा मैं जानता हूँ। तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है?
1: अरे।
0: बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया, गले लगा लिए मुझे।
1: क्या बात है,

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है
1: ये
0: उसकी।
1: है।
0: जी
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा, तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं। फिर उनके
0: जी
1: सिटिंग रूम मैरीलैंड, उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो।
0: जी
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता है,
0: जी

0: 噔噔噔！
1: 知道吧？क्या बात है।
0: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं, और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पी से ये पंचम को सा करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मेरे सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा।
1: जी।
0: मेरे अंदर ना डर नहीं था, अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये शुरू से नहीं था। जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया।
1: क्या बात है।
0: पंचम दा मेरे पास आया, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो। तो उस जमाने

0: मैं उनको याद कर रहा हूं, उन बड़े लोगों
1: जी
0: को,
1: बिल्कुल.
0: रामचंद्र धोत्रे साहब थे, उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा, एक एक बांसुरी चुन चुन के, चुन चुन के, चुन चुन के, जो सुरीला था मैंने उठाया
1: क्या बात है, वाह.
0: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया। और पंचमदा ने RDFC लिखते थे, RD बर्मन, FC माने फिल्म सेंटर, महीने का 25 डेट मुझे मिल गया। मैं मुझे तो चांदी हो गई।
1: वाह.
0: अरे उस जमाने में महीने में 15-15 हजार रुपए मैं कमाने लगा, तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से। पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, ये
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पैसे के
1: हाँ
0: पीछे लग गया है।
1: हाँ
0: मगर गलत साबित उनको मैंने किया, मेरी वाइफ भी जानती है, और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा
1: जी.
0: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं। रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है।
1: जी.
0: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं।
1: जी.
0: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ,
1: गान सरस्वती
0: हाँ गुरु माँ, माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी
1: जी.
0: ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है, वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो। प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस,
1: बिल्कुल.
0: रियाज एक अकेले में करने की चीज है। जब तक आप डूबेंगे नहीं, ये एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।
1: क्या बात है.
0: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए।
1: जी.

शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज़ में प्यार की जीत फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुसन लाल भगत राम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली।

0: मिली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कानन देवी की आवाज़ में हॉस्पिटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है पंडित भूषण ने और

0: सात बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कानन देवी की आवाज में हॉस्पिटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है पंडित भूषण ने और संगीत से सवार है कमल दास गुप्ता ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का
3: मगर कुछ गीत

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में नदिया के पार फिल्म का गाना, मोती हैं गीतकार और संगीतकार हैं श्री रामचंद्र।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भोले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है उमा देवी की, फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में आग फिल्म से गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीतकार हैं राम गांगुली।

0: जैसा मुखड़ा सब बोले हाय राम होए होए सब बोले हाय राम
1: हाय हाय सब बोले हाय राम हाय हाय सब बोले हाय राम
0: सबकी लागी पे नजरिया सोला बरस की भई उमरिया सोला बरस की भई उमरिया
1: सोला बरस

0: उमरिया 16 बरस की भई उमरिया
1: 16 बरस की भई उमरिया तो
2: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में बंदिश फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में धोखेबाज फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, फिल्म का नाम बुलंदी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आशा फिल्म से गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के

0: जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे

0: अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र

0: जून में लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसर

0: सिटी में। कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें,

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है। तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज़रा ज़रूरी है। ये सच है कि तरक्की ज़रूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी सुनने वालों का, कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ चित्रलोक, आपका दोस्त राजेश आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता है। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम की शुरुआत में कार्तिक का गाया हुआ वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का गाना। नीलेश मिश्रा है गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए नकश अजीज और मधुबंती बाक्षी की आवाजों में लव्यापा फिल्म का गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए राघव राजा हसन की आवाजों में वेल्डन अब्बा फिल्म का गाना। अशोक मिश्रा हैं गीतकार और संगीत।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे।
2: एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। दो दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम दो तीन दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके हमने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। कुछ लोग उसको पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे, उनके कुछ बाथरूम्स बनने थे, तो इसलिए मैंने वो घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए। हमने सोचा है अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: अतिथि पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी। आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी, इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

0: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज दिन में 11 बजे।
2: एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। दो दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम दो तीन दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके हमने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। कुछ रोगियों को पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे, उनके कुछ बाथरूम्स बनने थे, तो इसलिए मैंने वो घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए। हमने सोचा है अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से। आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ आपसे, लेट्स गो ऑन अ डांस फ्लोर।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ क्लासिफाइड एड्स।
0: चंडीगढ़ सेक्टर 36 से 40 में 2 BHK फ्लैट खरीदना है तो संपर्क करें 94182-95950 पर।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ क्लासिफाइड एड्स।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्त लागू।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम आज का अखबार का।
1: आज का अखबार।
0: दोस्तों, बारिश, ये शब्द सुनते ही मन में एक अलग सी ताजगी उतर आती है। तपती धूप, गर्म हवाओं और बेचैन कर देने वाली गर्मी के बाद जब आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो केवल मिट्टी ही नहीं महकती बल्कि इंसान का मन भी खिल उठता है। शायद यही कारण है कि बारिश को केवल एक मौसम नहीं बल्कि उम्मीद, जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। बारिश हमारे लिए परिवर्तन, धैर्य और विश्वास का संदेश लाती है। बारिश के माध्यम से प्रकृति हमें बताती है कि चाहे गर्मी कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां कभी हमेशा नहीं रहती। दोस्तों, बारिश हमारे जीवन की गति को कुछ पल के लिए धीमा जरूर करती है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि भागदौड़ से भरी जिंदगी में कभी कभी ठहरना भी जरूरी है। खिड़की के पास बैठकर बारिश को निहारना, मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस करना, अपनों के साथ चाय की चुस्कियां लेना या बच्चों के साथ कागज की नाव बनाना, ये छोटे छोटे पल जीवन की सबसे बड़ी खुशियां बन जाती हैं। आज की भागम भाग जिंदगी में बारिश हमें प्रकृति से जुड़ने और बहुत कुछ सीखने का अवसर देती है, और इसीलिए तो हम कहते हैं इन बूंदों को दिल की धड़कनों से मिलने दो, मिट्टी की खुशबू को रूह में उतरने दो। जो बात लफ्जों में ना कह सके उन्हें आज इस बारिश को छम छम कर कहने दो।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी, आज दिन में 11 बजे।
1: एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास, तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम 2-3 दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके

0: ने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। कुछ रोगियों को पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे उनके, कुछ बाथरूम्स बनने थे, तो इसलिए मैंने वो घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए। हमने सोचा है अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
1: तो सुनना न भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: दोस्तों, कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए अब आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों से रूबरू करवा दें।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की। व्यापक पायरेसी को देखते हुए भारत सरकार ने निजी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का किया उद्घाटन और संशोधित उड़ान योजना का भी किया शुभारंभ। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में वार्षिक लीडर समिट में लेंगे भाग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री करेंगे स्वागत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरू। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्थायी परिचालन ठिकाने साके में आयोजित एक औपचारिक पदक परेड के दौरान संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से किया सम्मानित। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फिलहाल बस इतना ही।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं, और आइए अब आपको क्षेत्रीय समाचारों से रूबरू करवा दें।

पंजाब सरकार ने शुद्ध दूध तंदुरुस्त पंजाब अभियान किया तेज। दूध की जांच को नोडल अफसर तैनात, 5,000 पोर्टेबल किट से करेंगे जांच। पंजाब सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूबे के 153 ब्लॉकों में मावा तियां दी हट्टी शुरू करने का खाका किया तैयार।

पंजाब सरकार वित्त मंत्री ने कहा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ व्यापारी 31 जुलाई तक उठा सकते हैं। ई वाहन नीति के विस्तार से पंजाब में बिक्री को मिली रफ्तार। वर्ष 2026 में अब तक 22,900 इलेक्ट्रिक वाहनों का हुआ पंजीकरण। मौसम विभाग ने सोमवार से अगले 3 दिनों के लिए पंजाब में भारी बारिश पड़ने का येलो अलर्ट किया जारी। हरियाणा में मिशन बुनियाद के 14 जिलों में 22 नए केंद्र खुलेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी के लिए पंजीकरण की तारीख 5 जुलाई रात 11:59 तक बढ़ाई। हरियाणा पुलिस मुख्यालय ने 7 और 8 जुलाई को करनाल के मधुबन स्थित सीएसओ परिसर में हरियाणा पुलिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, शिंकुला और बारालाचा में बर्फबारी। कई स्थानों पर जमकर हुई बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 6, 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट किया जारी। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले सप्ताह मैट्रिक और जमा 2 की वार्षिक परीक्षा 2026 के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण का परिणाम करेगा घोषित। क्षेत्रीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम आज का अखबार का आप आनंद उठा रहे हैं और दोस्तों आइए अब आपको बता दें कि क्या कुछ हो रहा है खास आपके आसपास स्थानीय समाचारों के माध्यम से।

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 8 जुलाई को प्रस्तावित 2500 इंडिपेंडेंट मकानों को मिल सकती है राहत। सिटी ब्यूटीफुल के सेक्टर 16 स्थित पंजाब कला भवन में शगुफे फेस्टिवल हुआ शुरू। शहर में हुए भवन हादसों के चलते प्रशासन ने लिया महत्वपूर्ण निर्णय, पुराने भवनों की सेहत परखेगा प्रशासन। चंडीगढ़ ललित कला अकादमी द्वारा फोटो प्रदर्शनी आज शाम 5:30 से सेक्टर 16-17 के अंडरपास में की जाएगी। चंडीगढ़ में मतदाता सत्यापन अभियान 75% हुआ पूरा, 3.80 लाख एन्यूमरेशन फॉर्म हुए अब तक जमा। जरूरी मरम्मत कार्य के चलते आज सेक्टर 38 वेस्ट के हिस्से में सुबह 10:30 से 11:30 तक बिजली बाधित रहेगी। और मौसम विभाग ने सोमवार से अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। स्थानीय समाचारों में फिलहाल बस इतना ही।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ अब रतीश कुमार को कार्यक्रम आज का अखबार यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत।
1: आज का अखबार।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। हिंदी समाचार अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के

0: प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप हैं विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र के साथ। वक्त है कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो चंडीगढ़।

0: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रतीश कुमार। दोस्तों, हमारे जीवन के छोटे छोटे हसीन पल हमारी खूबसूरत यादें बन जाती हैं, और जब हम ये पल अपनों के साथ बिताते हैं, बच्चों के साथ बिताते हैं, तो ये यादें चुलबुली बन जाती हैं, जो चेहरे पर कभी मुस्कान ला देती हैं तो कभी अपनों को याद कर आंसू ला देती है। और आज इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही कुछ खट्टी मीठी यादों से जुड़ा विषय लेकर आए हैं। विषय है स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादें, वो गर्मियों की लंबी छुट्टियां, नानी दादी का घर, सुबह से शाम तक खेलना, आम के पेड़, कॉमिक्स, कुल्फी, बिना मोबाइल वाली दुनिया। आज हम उन्हीं खूबसूरत यादों की गलियों में चलेंगे और जानेंगे आपसे कि आपकी सबसे यादगार छुट्टी कौन सी थी, छुट्टियों में सबसे ज्यादा शरारत आपने कौन कौन सी की थी, क्या आज के बच्चों की छुट्टियां पहले जैसी हैं, नानी दादी के घर की कौन कौन सी बातें आज भी आपको याद हैं। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमसे साझा करना चाहते हैं इस विषय के साथ, अपनी खट्टी मीठी यादें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए, नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619। एसटीडी कोड है चंडीगढ़ शहर का 0172। और देखिए, अभी हमने आपको विषय बताया और हमारे कॉलर हमें कॉल करना शुरू भी हो गए। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कैसी रही इनकी खट्टी मीठी यादें छुट्टियों वाली। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग रितेश जी।
0: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
1: मैं किरण बात कर रही हूं।
0: जी किरण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: जी, आपने विषय जान लिया आज का कि क्या है?
1: जी सर।
0: जी, आज हम बात कर रहे हैं कि स्कूल की छुट्टियों से कौन जुड़ी कौन कौन सी ऐसी हसीन यादें हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं।

0: सर मैं तो ये शेयर करना चाहूंगी, हम जब मतलब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी हम अपनी नानी के
1: जी नानी तो, के
0: जी सर नानी के घर जाते थे तो मतलब आप बहुत प्यार करते थे।
1: तो कितने भाई बहन थे आप सभी?
0: सर ये तो हम दो ही है। तो सर जब हम जाते थे तो मतलब हम अपने भाई के साथ थोड़ी करते थे लड़ाई झगड़ा होता है। तो मतलब तो भाई

0: तो सर जब हम जाते थे तब मतलब हम अपने भाई के साथ थोड़ी करते थे लड़ाइया, लड़ाई झगड़ा होता है तो मतलब तो भाई बहन में छोटी थी तो मतलब उसको मतलब अपने भाई को मरवाने में बड़ा मजा
1: तो जानबूझ के नाराज हो जाना या फिर जानबूझ के रोने लग जाना उसने अगर हाथ भी लगाया तो है
0: रोना
1: बहुत बढ़िया। तो आज कैसा फील होता है जब आपको वो यादें याद आती हैं?
0: सर आज तो वो हम बहुत मिस करते हैं।
1: और आजकल के बच्चों की छुट्टियां कैसे लगती हैं आपको, कि क्या ये वो मजा और वो जो आनंद आता था छुट्टियों को बिताने का, क्या बच्चे फील कर पाते हैं?
0: नहीं सर।
1: ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
0: सर क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, छुट्टियों में चीज बच्चे तो फोन पकड़ने लग जाती है तो बस उनके गेम शुरू हो जाती है तो जो मजा पहले वाली जिंदगी में था वो मजा इस जिंदगी में नहीं लग रहा है।
1: चलिए आधुनिकता ने जरूर हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं जगह बनाई है, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि अपनी यादों को हम तरोताजा रखें और अपने बच्चों के साथ शेयर करें कि किस तरह से हम भी छुट्टियां बिताते थे, और उन्हें भी प्रेरित करें कि अपनों के साथ बिताए हुए पल ही यादें बनती हैं, ना कि मशीनों के साथ। जी
0: सर, आज मेरी नानी तो एक्सपायर हो गए हैं,
1: जी बहुत बढ़िया। तो आगे आप सुनाती हैं वो कहानियां बच्चों को?
0: जी सर बिल्कुल।
1: तो किरण जी आपने कॉल किया, हमसे अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं, आइए बात करते हैं हमारे कॉलर के साथ, क्या है उनके विचार आज के विषय के बारे में। हेलो जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: पवन।
1: जी पवन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में, स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में?
2: पापा काम कर रहे सरकारी। हां जी।

0: अभी कॉर्नर पे आया अभी का अभी चुकी हूँ तो बाहर आ रहे टप्परे उसे चल जाना
1: अच्छा जी
0: तो उठे बड़ा मजा आ रहा है का
1: किन्ने जने होंगे सके सारे टब्बर दे विच
0: हाँ यार कर रहा है चार भाई
1: अच्छा दो ना अच्छा फिर तो रौनक खूब लगती होनी
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: और पहला न्याणे बूटे ते आप ही चढ़ के तोड़ लेंदे हुंदे सीगे सारा कुछ
0: बड़ा मजा उस टाइम दफ्तरां नाल खेल खेल रहे करे कुछ
1: अज कल हुण सानू न्याणे नूं सिखाणा पैणा है कि किद्दां तुसीं छुट्टियां अपणियां वधिया तरीके नाल बिता सकदे हो
0: अज कल जिहड़ा हैगा जिहड़ा नहीं बच्चां चलो हुण जिहड़ा नहीं रहे छोटे शहर नहीं ना जिहड़ा है खेडां वास्ते पहिलां बणदी रही
1: जी
0: हुण सारे शहर मतलब काफी सगर सगर हो गए समझ लो
1: जी बिलकुल
0: गलियां भुइयां हो गईयां
1: सही गल है पवन जी तुसी कॉल कीता साडे नाल अपने विचार सांझा कीते छुट्टियां दे बारे तुसी अपनी यादां सानू ताजा कीतियां बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन लई थैंक यू जी बात करते हैं अगले कॉलर के साथ क्या है उनके विचार हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार कौन बात कर रहे
2: हैं हेलो
1: जी नमस्कार कौन बात कर रहे हैं
2: नमस्कार जी रितेश कुमार जी को मेरी प्यार भरी नमस्ते जी
1: नमस्कार जी कैसे हैं आप कार्यक्रम में आप
2: मैं ठीक हूं सर जी मैं सेक्टर 42 चंडीगढ़ से बोल रहा जी
1: जी जी
2: रितेश कुमार
1: जी सतीश जी कैसे हैं आप
2: ठीक हूं जी
1: जी आज हम बात कर रहे हैं स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में क्या
2: बहुत याद है जी बचपन दोबारा नहीं आता जी
1: बिल्कुल सही कहा
2: बचपन की बहुत याद आती है काश बचपन दोबारा आ जाए
1: जी
2: हम बचपन में आम और जामुन पे ऊपर चढ़ के फल खाते थे जी
1: बिल्कुल
2: अपना देखना आम नरम है तो उसको उस बेही पे चूप लेना जी
1: जी
2: जामुन भी बेही पे खा लेनी ऊपर चढ़ के
1: जी
2: जो पड़ोसियों के टहनियां चली जाती थी हमारे यहाँ अच्छा। हम किसी तरह से अपनी तरफ आम गिराने की कोशिश करते थे कि अपने घर में गिरे
1: सही बात है
2: पड़ोसियों की तरफ टहनी जाती थी कहीं उनको ना आम चला जाए जी
1: बिल्कुल और ये होड़ मची रहती थी बच्चों के बीच में आम अमरूद जामुन के पेड़ों पे चढ़ने की
2: हमारे तो बहुत पेड़ लगे हुए हैं जी अब इंजीनियरिंग कॉलेज में
1: जी
2: हर तरह का पेड़ था अपना ये खाना हमने जी
1: जी
2: बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे खट्टी याद है जी
1: जी
2: क्रिकेट खेलते हुए बॉल कट होके बैठ के पड़ोसियों के शीशे पे लगी जी वो जन्मदिन मना रहे थे जी
1: अच्छा जी
2: उनका जो भी सामान था केक वगैरह सब में कांच भी कर गया जी बहुत नुकसान हो गया लेकिन पड़ोसियों ने हमें कुछ कहा नहीं जी
1: बिल्कुल
2: हमारे संबंध बहुत अच्छे थे उन्होंने कोई हमें शिकायत नहीं की ना हमें झाड़ा जी कहते बच्चे हैं खेलेंगे शीशे तोड़ेंगे खेल के ही बड़े होंगे जी
1: अच्छा एक और पहलू होता था होमवर्क का छुट्टियों का काम
2: होमवर्क हम पहले 5 दिनों में कर लेते थे 42 लिखाई मिलती थी 42
1: बहुत बढ़िया जी
2: हिंदी इंग्लिश पंजाबी
1: रोज का एक पेज
2: 42 लिखाई है टीचर कहते थे ले लो और अपना जो है सवाल देते थे अपना मैथमेटिक्स के जी
1: बिल्कुल
2: इतनी अपना शब्दावली अपना लड़ियां कर लो जी
1: सही बात है
2: बोल देते थे फिर होमवर्क जब टीचर ने कराया नहीं होता तो वो अपने आप करना पड़ता था जी
1: बिल्कुल आपने देखिए कितनी प्यारी प्यारी यादें
2: कॉपी लेनी थी बच्चों से
1: जी आपने हमारे साथ अपनी कितनी प्यारी प्यारी यादें शेयर की हैं कॉल
2: एक बार और कहता हूँ जी
1: जी बताइए
2: हम फिल्मों देखने के बहुत शौकीन थे
1: जी
2: पिताजी हमें 10 रुपए देते थे हम

0: दो फिल्में देख के आते थे,
1: डेढ़
0: रुपए की टिकट ले लेते थे और पैदल चले जाते थे जी।
1: जी जी,
0: पिताजी एक फिल्म के देते थे 3-3 रुपए की टिकट होती थी, हम दो दो फिल्में देख के आते थे।
1: बहुत बढ़िया, आपने अपने विचार हमसे साझा की, अपनी यादें हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के। शुक्रिया दोस्तों। आप भी अगर अपने स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादें हमसे साझा करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, नंबर है 2660615, 2660617 और 2660619, एसटीडी कोड है 0172।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी, आज दिन में 11 बजे।
4: एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास, तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। 2 दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम 2-3 दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके हमने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। कुछ रोगियों को पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे, उनके कुछ बाथरूम्स बनने थे, तो इसलिए मैंने वो घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए। हमने सोचा है अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
3: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां, आज दिन में 11 बजे।

0: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में। तो चलिए जानते हैं कैसी खट्टी मीठी यादें हैं हमारे अगले कॉलर की। हेलो,
1: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी
1: जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जी, अपना स्कूल की छुट्टियों में हम शहर में पढ़ते थे
0: जी,
1: और जो काम मिलता था छुट्टियां को जल्दी जल्दी खत्म करके फिर हम गांव चले जाते थे
0: जी।
1: तो गांव में जाके अपने जो दोस्त होते थे बिरादरी में, उनके साथ जंगल में चले जाना
0: जी,
1: लकड़ियां कटके लाना, और जो पानी मिलता था वो 1 किलोमीटर से मिलता था खूह से
0: जी।
1: तो हम जो गड्ढे होते थे उन दिनों पुराने मिट्टी के,
0: हाँ जी,
1: जहाँ गागर कहते थे,
0: बिल्कुल गागर, हाँ
1: हाँ जी,
0: कांसे की या उसकी रहती थी वो,
1: कांसे की, हाँ जी,
0: बिल्कुल जी।
1: तो हम ले जाते थे उठा के उसको अपने मोढ़े पे, शोल्डर पे,
0: ओके,
1: तो भर के उसको लाना। तो हमें लोग कहते थे देखो ये शहर से आए हैं फिर भी कितने मेहनती हैं
0: जी। अच्छा, वो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों में, तो इस तरह के कोई भी काम हो वो हमेशा तत्पर रहते हैं करने के लिए।
1: वो दोस्तों के साथ मिलके और भी एनर्जी बढ़ जाती है ना जी, पुराने दोस्त होते हैं,
0: ये तो है जी।
1: हाँ जी
0: जी, तो स्कूल की छुट्टियों का जो काम रहता था तो वो पहले ही निपटा के जाते थे या
1: वो फिर? पहले जी 1 हफ्ते में निपटा के जाना जी, तो आगे उसका कोई फिक्र ना रहे बाद में।
0: और हमेशा ज्यादातर ड्रावा पेरेंट्स को देखा है कि हम लेके नहीं जाएंगे अगर आपका काम नहीं खत्म होगा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले हफ्ते में ही खत्म कर देते डे एंड नाइट करके ज्यादा टाइम लगा देना खेलना काम करना।
0: और
1: अक्सर बाद में पता होता था गांव में जाके खेलें कूदेंगे, वहां पर हवा भी अच्छी होती है, दोस्त भी नए मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: काम भी नए आएंगे। शहर में कौन पानी भर के लाता है खूह से,
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो इस तरह की चीजें बहुत मतलब आपको याद हैं। और किस तरह के खेल खेलते थे आपको कुछ याद है?
1: खेल जी उन दिनों जो लकड़ियां होती हैं हमारे घर में जो जिनको हम जलाते थे, पतली पतली लकड़ियां होती हैं जो
0: जी,
1: वो 3 लकड़ियां इकट्ठी करनी, 3 विकेट बन गई घर वाली का, अपना मदर का वो बैट होता था कपड़े धोने वाला
0: जी, थापी
1: वो ले जाना थापी तो विकेट को किसी दीवार के अगेंस्ट खड़ी कर देना, और यही क्रिकेट वाज दी बेस्ट गेम एट दैट टाइम।
0: और हमने
1: मैं लगभग 75 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी, वेन 9वीं 10वीं में आप पढ़ते थे,
0: और उस वक्त तो पिट्ठू और मेरे ख्याल से गुल्ली डंडा भी बहुत खेला जाता था।
1: गुल्ली डंडा बहुत ज्यादा था, गुल्ली डंडा बहुत खेलते, और कांचे भी खेलते
0: जी, बिल्कुल जी, कॉल करने के लिए
1: कांचों का भी कंटेस्ट होता था। और जब हम गाँव में आते थे वहाँ कांचे नहीं होती थी, वो छोटे छोटे पेबल होते थे, पेबल
0: गिट्टे,
1: तो वहां पर हम गिट्टों से एक स्टापू होता था,
0: स्टापू, सही बात है बिल्कुल। नरेंद्र जी बहुत ही हसीन यादें आपने ताजा करवा दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी, शुक्रिया, नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग।

0: जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो शर्तां लागू
1: दोस्तों आप भी अगर हमसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं अपनी स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादें हमें बताना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं नंबर है 2660615 2660617 और 2660619

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ, क्या है उनकी खट्टी मीठी स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादें। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
2: सर नमस्कार, मैं राजेश शर्मा बात कर रहा हूं।
1: जी राजेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी तो क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में?
2: सर अभी मैं दरअसल रेडियो ही सुन रहा था, तो ये मुझे इंस्टिगेट किया, एक मैं भी अपनी बात रखूं दिल की।
1: बिल्कुल।
2: जब हम छुट्टियों में अपने यहाँ मतलब टेंथ से पहले पहले जो चलती थी गर्मी की छुट्टियाँ, तो एक तो पक्का था कि जैसे हम लोग की छुट्टियां आई तो पापा हमारी टिकट करते थे हिमाचल की।
1: जी।
2: दादी के पास जाना, दादी ने हमारे खेत के काम करवाने और पेड़ों पे चढ़ना, वो आके फिर आके छुट्टियों में जो सुलेख, हमारे टाइम में तो होमवर्क बहुत मिला करता था, हिंदी का, इंग्लिश का, सामाजिक का, सुलेख 20-20 एक कॉपी करनी, मास्टर जी ने ए बी वाले काम करवाने, मैथ का सारा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। फिर छुट्टियों में जो हम खेला करते थे वो था हमारा शापू था, पिट्टू गर्म था, लुकन मिट्टी थी, और वो चील चील कांटा, तेरे वो पे चांटा। फिर अब जैसे जामुन के दिन है,
1: बिल्कुल,
2: तो उस वक्त तो थैला लेके मम्मी ने जो थैला, दूसरे थैले होते थे, ये बात कर रहा हूँ मैं 80s, late 80s या 90s, 91, 92 के टाइप की।
1: जी।
2: तो ऊपर चढ़ के जामुन तोड़ के कम से कम 10 किलो जामुन खुद भी खाने, नीचे हरा पूरा परिवार है, लोगों को देने, खुद खाने, वो टाइम जो चला जाएगा ना सर, वो अब मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे कि जब इंसान के पास जो होता है वो उसकी वैल्यू नहीं करता, जब हाथ से चला जाता है तो उसके बारे में सोचता, ऐसा क्यों?
1: ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पास जो नहीं होता हम उसी के बारे में सोचते हैं, और जब वो चला जाता है फिर हम अक्सर उसी के बारे में फिर से सोचते हैं।
2: वही एक रीजन मेरा क्वेश्चन था ना कि ऐसा क्यों, आदमी की शायद ये फितरत ऐसी
1: बिल्कुल
2: कभी भी खुशी नहीं रहता वो जो उसको भगवान दे देता है,
1: हम आगे से आगे खुशियां तलाशने की कोशिश करते हैं, जबकि जो भगवान ने हमें दिया उसी में हमें खुश रहना चाहिए।
2: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल। और स्कूल की छुट्टियों की अक्सर अगर हम आज के बच्चों की बात करें तो आज के बच्चे जो है ज्यादातर मोबाइल में अपना टाइम
2: सर ये जनरेशन, तो मैं मतलब नॉर्मली घर में बोलता हूँ कि मेरे भतीजे के जो बच्चे हैं वो उनका बचपन हमने देखा ही नहीं, बचपन जो था हमारा या हमारे जो भतीजे का बच्चा बचपन था, सॉरी, वो मोबाइल, उनके पास और डिस्ट्रेक्शन हो गई है,

0: अपने आप को अम्यूज करने के लिए.
1: बिल्कुल.
0: जो फर्दर उनकी मदर्स हैं उनका भी वैसे ही चला, मतलब जो हमारे बाद और उसके बाद की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वहाँ वो डेविएट हो गया उनका फोकस, कहीं सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा हो गया बनिस्पत सोशल के.
1: बिल्कुल. और जो मेल मिलाप है वो लोगों का खत्म होता जा रहा है, बच्चों का आपस में कहीं ना कहीं बच्चों में दूरी होती जा रही है. जो छुट्टियां आती थी तो बच्चे प्लान्स बनाते थे कि हम कौन कौन सी गेम खेलेंगे, देर तक सोएंगे, या कुछ बच्चे थे जो जल्दी सुबह उठ के ग्राउंड पहुंच जाते थे कि अपने दोस्तों के साथ.
0: हम ये थर्ड कैटेगरी वाले थे कि जो सवेरे सवेरे उठ के 6 बजे ग्राउंड पहुंच जाना, 5:30 बजे जाके वहाँ विकेट अपनी विकेट कर लेनी, क्योंकि संडे का दिन होता था तो कम से कम 20-20 टीमें होती थी.
1: बिल्कुल.
0: अब वो ग्राउंड भी नहीं रहे, वहाँ बिल्डिंगें बन गई,
1: तो कब्जा पहले जो आएगा वही करेगा,
0: अब वही खेलेगा. अब वो सर वो टाइम ही नहीं रहेगी वो.
1: बिल्कुल सही,
0: मतलब बहुत मिस करते हैं उन टाइम को, बट अब वो चला गया तो अब कहाँ वापिस आएगा.
1: और आज के बच्चों में शायद हमें ही ये कहीं ना कहीं जागरूकता लानी पड़ेगी, या कहीं उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे कि इन चीजों में भी बहुत मजा है अगर वो मोबाइल और ये मशीन की दुनिया से बाहर निकले.
0: पर एक चीज यहाँ पे मैं एड ऑन करूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो जो हम लोगों की हमारे पेरेंट्स ने अपब्रिंगिंग करी है, हमें जो संस्कार दिए हैं वो हमने अगली जनरेशन को दिए, बट जो नेक्स्ट जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन आ रही है ना जी, वो वही प्रॉब्लम है. और प्रॉब्लम क्या है, जो मोबाइल के आने के बाद ना, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी सोशल गैदरिंग पे चले जाओ, जो यंग मदर्स है जिनके अभी टॉडलर्स है, जो 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का, 2 साल का, उनके हाथ में मोबाइल पकड़वा रखा है और अपने आप वो खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ना हमारे जो घर से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था इस चीज की.
1: बिल्कुल राजेश,
0: और सॉल्यूशन भी घर में ही है.
1: जी राजेश जी, आपने हमसे अपने विचार साझा किए, अपनी यादें हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए.
0: थैंक यू सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा,
1: हमें बहुत अच्छा लगा जी. शुक्रिया
0: थैंक यू सर.
1: बात करते हैं अगले कॉलर के साथ, जानते हैं उनकी कैसी यादें हैं. हेलो हेलो जी, हेलो,
2: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं.
2: सर मैं ममता बात कर रही हूँ.
1: जी ममता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप.
2: सर मैं कुफर से बात कर रही हूँ.
1: जी ममता जी, क्या कहना चाहेंगे, आज आप स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में हम बात कर रहे हैं.
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहले की जो छुट्टियाँ होती थी वो बहुत ही मजेदार होती थी. मतलब जैसे हम के बाद स्कूल भी जाते थे.
1: जी
2: तो सर मैं अपनी बात कहती हूँ. मैंने मतलब जैसे गोलगप्पे के खाते हैं ना
1: जी,
2: तो हम
1: जी, आप थोड़ा सिग्नल में आएंगे ममता जी, आपका आवाज जो है आपकी वो क्लियर नहीं आ पा रही है. जी
2: जी, अब आ रही है सर.
1: जी बिल्कुल कहिए.
2: तो सर मैं ये कह रही हूँ कि जब भी हम स्कूल जाते थे तो मतलब जैसे गोलगप्पे पड़ी वगैरह होती थी ना खाने के लिए, तो मतलब हम उसको खाने के लिए झट से आ जाते थे. तो मतलब तो जब पैसे भी नहीं होते थे तो मतलब वो अंकल होते थे ना जो
1: जी,
2: तो वो हमें मतलब उधार दे देते थे. आज के टाइम पर अगर आप पापड़ बोल जाते या पापड़ी जो भी तो वो हम नहीं देते.
1: तो कौन सा खाना था जो सबसे ज्यादा पसंद आता था आपको छुट्टियों में.
2: जी सर,
1: मैंने कहा कि ऐसा कौन सा कोई डिश थी या कोई ऐसा कोई खाना था, व्यंजन था, जो आपको सबसे ज्यादा मन भाता था कि इस छुट्टियों में मैं यही खाऊंगी सबसे ज्यादा.
2: गाजर का हलवा.
1: गाजर का हलवा. अच्छा, सर्दियों की छुट्टियां, हिमाचल में अक्सर सर्दियों की छुट्टियां होती हैं.
2: जी,
1: जी इसीलिए गाजर का हलवा. जी, और किस तरह के गेम्स खेलते थे आप छुट्टियों में.
2: सर जैसे खो खो हुआ, बैडमिंटन हुए, मतलब मैक्सिमम सारे खेले
1: हैं. जी तो खूब मजा आता था आपको छुट्टियों में.
2: जी सर, के बाद लग भी जाती थी तो मतलब हम जैसे खुद गिर जाते थे ना तो हम बाहर नाल गाते बोल देते थे घर में, हमको इसने गिराया भाई ने सिस्टर ने.
1: एक दूसरे के नाम लगाते थे, इल्जाम एक दूसरे के ऊपर.
2: जी सर, बहुत मजा आता था.
1: जी बहुत बढ़िया ममता जी, आपने कॉल किया, आपने विचार साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए.
2: थैंक यू सर.
3: थैंक यू. लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग.

0: and many other exciting benefits. Aaj hi visit karein apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate karein. Terms and conditions apply.
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी आज दिन में 11 बजे।
2: एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासकों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। दो दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम दो तीन दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके हमने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। कुछ लोग उसको पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे, उनके कुछ बाथरूम बनने थे, तो इसलिए मैंने वो घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए। हमने सोचा है अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
1: तो सुनना न भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना,

0: सैंडल नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्य और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ का आप आनंद उठा रहे हैं। आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ, क्या हैं उनके विचार स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में। हेलो
3: जी भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
2: योगेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद
2: जी, क्या कहना चाहेंगे स्कूल की छुट्टियों से जुड़ी यादों के बारे में?
3: वो तो हमारी तो यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है भैया। उस दौर में तो दोस्तों के साथ खेल खेलना सबसे ज्यादा खास रहा है, क्योंकि उस समय तो ये जो आज मोबाइल दिन भर देखते रहते हैं, उस समय मोबाइल का सुविधा था नहीं। तो जो हमारे पारंपरिक खेल हुआ करते थे, या जो जैसे अभी बारिश का समय है, नाव चलाना, हालांकि छुट्टियों में मतलब मामा के घर जाना या और बुआ के घर जाना, ये सब चीजें भी काफी याद में है।
2: और खाने पीने का कैसा रहता था, स्पेशल डिशेस होती थी?
3: हाँ, वो जो बचपन में कह सकते हैं भैया, उस समय जो जैसे सगा के घर या मतलब रिश्तेदार के घर जाते थे तो कुछ ना कुछ नया भी बनता था। जैसे व्यंजन हो गया, पूरी सब्जी, रोटी भजिया, ये सब चीजें।
2: और खेल किस तरह के खेलते थे आप? जब
3: खेल हमारे यहाँ जैसे वो कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, और जो और हमारे पारंपरिक खेल है, बिल्लस वगैरह है हमारे यहाँ, भौरा वाला हो गया, मिट्टी से मतलब घर बनाना या अन्य चीजें बनाना, ये सब चीजें होती थी।
2: और पिट्ठू वगैरह भी खेलते थे ज्यादातर?
3: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी चलता है, जो बच्चे लोग खेलते हैं ना तो आज भी मजे से देखते हैं।
2: और अक्सर कपड़े की बॉल ये होड़ रहती थी कि कौन सिलकर लाएगा वो कपड़े की बॉल जिससे पिट्ठू बनेगा, मारेंगे जिससे, है ना
3: जी।
2: योगेश जी, और अक्सर छुट्टियों में पहले के दौर में ज्यादातर बच्चे कॉमिक्स की तरफ बहुत जाते थे पढ़ने के लिए।
3: हम स्वयं भी पढ़ते थे भैया, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था कि मतलब ये जो हम आज सारी चीजें मोबाइल में जैसे सिमट कर रह गई है, तो उस समय कॉमिक्स ये एकदम डेली रूटीन में होता था।
2: अलग अलग किरदारों की कॉमिक्स होती थी जिसको हम रूटीन में पढ़ते थे, फिर एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे कॉमिक्स को।
3: जी जी जी।
2: और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो रीडिंग स्किल्स जो था वो बच्चों में बढ़ता था उससे?
3: बिल्कुल, मैं तो आज कोशिश करता हूँ भैया, घर में अखबार आता है तो बच्चों को थमा देता हूँ स्वयं पढ़ने के बाद, तो चलो स्किल भी डेवलप होगा और देश दुनिया की जानकारी भी उनमें मतलब बढ़ेगा।
2: बिल्कुल योगेश जी, आपने कॉल किया, हमसे अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। बात करते हैं अगले कॉलर के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। समिता जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में आप?
4: आज ये छुट्टियां है ना सर?
2: जी,
4: गर्मी की छुट्टियां, हमारे तो ठंडा स्टेशन होता था हिमाचल तो गर्मी की बोलते थे।
2: बिल्कुल।
4: हाँ जी सर, तो थैंक यू, पहले तो मेरे को टाइम ओवर हो रहा है, आपने
2: जी बिल्कुल दे दिया। एक मिनट तो हम जल्दी से बात करेंगे खत्म।
4: हाँ जी हाँ जी, ये ना जैसे हमारे नाम के हिमाचल में होते थे, पंजाब के साथ हुशियारपुर के साथ लगते, तो 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता था मार्केट से ना सर
2: जी।
4: तो मेरे नाना जब हम छुट्टियों में जाते थे, पहले तो सबसे पहले डिक्टेशन हिंदी का फटाफट खत्म कर लेते, स्कूल लगे लगे सुंदर सुंदर लिखाई 60 की 60 लिखनी होती थी जितनी छुट्टियां होती थी।
2: गेम्स कौन कौन सी खेलते थे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट गेम्स में रहता है छुट्टियों में।
4: हम तो लड़कियों के भी लड़कों वाली गुल्ली डंडा खेलते थे
2: कंचे गुल्ली डंडा,
4: मैं बहुत दूर तक फेंक देती थी।
2: अच्छा,
4: बड़ा बच्चा थी ना, फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं अपने को लड़का ही समझती थी, मेरे पापा भी मुझे ऐसे ही बोलते थे।
2: बिल्कुल।
4: तो नान के जाना, फिर नाना जी ने वो स्टिक के शोल्डर पे स्टिक लगानी, फ्रंट के आगे भी स्टिक में थैला होता था, पीछे भी मिठाइयों का दालों का, वो हमने 2 किलोमीटर चल के उन्होंने लेके आना, तो सारी प्रॉब्लम उस टाइम ना शौचालय होते थे, हम ऐसे ही जाते थे एक जगह जिसको

0: कार्ड बोलते हैं वांग मुंह जाते थे, और साथ में आम मुंह तोड़ के ले आते, मतलब अलग ही सीन होता था सर।
1: अलग बहुत ही हसीन यादें रहती हैं बचपन की, और खास कर छुट्टियों की, है ना, आज के दौर में बहुत याद आती है। खैर, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू सर,
1: शुक्रिया।

दोस्तों आज इस विषय पर आपसे बात करके सचमुच ऐसा लगा जैसे हम फिर से अपने बचपन में लौट गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी खूबसूरत यादें हमारे साथ साझा की। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के साथ और भी कीमती हो जाती हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब रतीश कुमार को दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम को समाप्त करने की।

0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है कार्यक्रम यादों का कारवा का।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 8वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: जिंदगी नामा, शानदार जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
2: दोस्तों, अपने लिए तो हम सब जीते हैं, जीना उसी का नाम है जो दूसरों के काम आए। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री प्रेम सिंह, कुष्ठ रोगियों की भलाई के लिए बहुत काम कर रहे हैं और पूरी जिंदगी इन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में अर्पण की है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी जमीन, अपनी जायदाद सब कुछ बेच के कुष्ठ रोगियों की ये सेवा कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
4: थैंक यू जी।
2: क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा में पूरी जिंदगी आपको हो गई है एक इतना अच्छा और भलाई का काम करते हुए। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आप कुष्ठ रोगियों की सेवा में आगे आएं?
4: मैं 30 साल से कुष्ठ रोगियों के कल्याण, पुनर्वास और सामुदायिक विकास के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने लेप्रोवेल मूवमेंट चलाई थी, जो कि उनका सर्वपक्षीय विकास करने के लिए काम कर रही थी। उसमें एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी भी थी और उसमें कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास भी था। पंजाब में जितने कुष्ठ रोगों की कॉलोनीज हैं, उनसे मुझे जब कोई

0: डायरेक्टर्स आते हैं, उनकी डिमांड आती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मैं जिस जिस अथॉरिटी से होना है उससे पूरा करवाता हूँ। इसकी प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी श्री रेलूराम से मिली थी, जिन्होंने मुझे बताया था कि इस दुनिया में जो दूसरों के लिए काम करता है वही असली इंसान है। अपने लिए तो हर कोई काम करता, जब दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके आते हुए दिक्कतों को खत्म करके काम किया जाता है तो वो असली काम होता है। और ये काम मैंने उनसे प्रेरणा लेकर पहले अस्पताल में रोगियों के भलाई के लिए शुरू किया था, तो बाद में आज से 30 साल पहले मैंने कुछ रोगियों को देखा, उनके हाथ ही नहीं हैं, उनके पांव ही नहीं हैं, तो इतने ज्यादा दर्दनाक जिंदगी रह रहे हैं वो। तो मैंने कुछ रोगियों की भलाई का काम आज से 30 साल पहले शुरू कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया था जब ये बीमार और गरीब हो जाते हैं तो इनको जब हर कोई इंसान छोड़ जाते हैं, घर वाले इनको निकाल देते हैं, सामाजिक बहिष्कार समझा जाता है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर आप इस काम को कभी बंद नहीं करना, तो मरते वक्त उन्होंने मेरे से ये शब्द ली थी कि इस काम को जिंदगी भर करता रहेगा।
1: जी, आपने अपने दादाजी की वो शपथ जो आपने अपने दादाजी को दी वो आज तक चल रही है और आप कुष्ठ रोगियों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और उनकी सेवा में आपने पूरी जिंदगी अर्पण की हुई है और आज भी आप उनके लिए वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले दिन से आपने शुरुआत की थी। प्रेम सिंह जी, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आपने कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी शुरू की?
0: बहुत सी मुश्किलें आती हैं, इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो पुनर्वास का है और दूसरा लेप्रोसी का उन्मूलन करने का है। तो जो उन्मूलन है, जब हम वहाँ उनके साथ, हमें समाज के सभी लोग कहते थे कि आपको ये कुष्ठ रोग हो जाएगा, पर हमें ये पता था कि स्पर्श से नहीं होता। और कई लोग तो ये कहते हैं जब कुष्ठ रोग हो जाता है कि दैवीय प्रकोप है ये।
1: जी जी।
0: तो और ये दैवीय प्रकोप से और पिछले जन्म का श्राप है, ये बिल्कुल नहीं है। और ये जीवाणु रोग है, लेप्र जर्म से होता है, 100% ठीक हो जाता है। पहले दवाई नहीं थी, अब मल्टी ड्रग थेरेपी आ चुकी है, 6 महीने से लेकर साल तक देने से बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, बशर्ते जो कुष्ठ रोग को पहले डिटेक्ट कर लिया जाए। जब ये पहले अर्ली डिटेक्शन है, जो ये कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है।
1: जी,
0: जब हम एमडीटी पहले दे दें तो कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई भी अंकछेदन नहीं होगा। नहीं, अगर इसको बाद में पता चला फिर अंकछेदन होने के चांसेस होते हैं। पेरिफेरी नर्व पर अटैक कर देती है, तो पेरिफेरी नर्व से बहुत से नुकसान होते हैं, आंखों का नुकसान हो जाता है, नाक की हड्डी का नुकसान हो जाता है, शरीर पर तांबे रंगे और व्हाइट पैचेस इस पर होते हैं और चुभन खत्म हो जाती है। जब ये चुभन खत्म होती है तो इसको अस्पताल में हम भेज देते थे, बाकी का काम तो अस्पताल करते हैं। तो एमडीटी दवाई वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, अस्पताल में इसका पूरा इलाज होता है। इसका मेन जो बहुत ही बड़ी समस्या है वो ये थी कि कुष्ठ रोगी अपने आप को बताना नहीं चाहते, वो इसको छुपा कर रखते हैं ताकि उनको समाज से निकाल ना दिया जाए या अपने घर से ही ना निकाल दिया जाए। बहुत से कुष्ठ रोगियों को घर से निकाल दिया गया और एक ऐसी धारणा थी कि कुष्ठ रोगी अपने घर को देख सकते हैं मगर अपने घर नहीं जा सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके घर भेजकर उनको मुख्यधारा से जोड़ दिया जाए।
1: जी प्रेम सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुष्ठ रोग है वो छुआछूत का रोग नहीं है और एमडीटी की दवाई खाने से पूरी तरह से ये रोग ठीक हो जाता है और अगर इस रोग का जल्दी पता चल जाए तो कुष्ठ रोग से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है, आपने जिस तरह से बताया।
0: हाँ जी।
1: तो जब हम इस तरह का कोई काम शुरू करते हैं तो पैसों की बहुत जरूरत पड़ती है, अगर फंड्स की बात करें तो फंड्स कहाँ से आप मैनेज करते हैं ताकि कुष्ठ रोगियों के लिए ये जो भलाई का काम है ये यूं ही चलता रहे?
0: मेरे को कभी भी आज तक कोई पैसा ना सरकार से मिला, ना किसी एनजीओ से मिला, ना हाँ कई बार डोनर आते थे तो जब वो किसी की समस्या कोई आती थी, जैसे रोपड़ के एक कॉलोनी में एक कंध गिर गई थी तो मैंने अखबार में लगा दिया, तो अखबार में लगाने से एक डोनर ने कहा, हमने उसको सीधा वहां भेज दिया। मैं उन डोनर्स को सीधा वहां उनके काम करवा देता था। हाँ, जो अथॉरिटीज के काम थे वो मैं खुद करता था, तो अथॉरिटी से कोई उनकी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करने के लिए मैं पूरा पूरा काम करता था। मेरे इस काम को देखते हुए सरकार ने मुझे स्टेट लेप्रोसी सोसाइटी की एनजीओ मेंबरशिप भी दी थी, जो मेरा लेप्रोसी वेलफेयर मिशन है उसको मेंबरशिप दी थी, मैं उसका 1 साल मेंबर रहा। तो उसमें भी मैंने उनको बताया, जो समस्या होती थी वो बताता रहता था। मैंने उनको कहा था कि मेडिकल लाइसेंस लागू कर देनी चाहिए, तो उससे उससे बहुत फायदा हो सकता है। हर एक लेप्रोसी पेशेंट को एक कार्ड इशू होना चाहिए, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को कलेबोरेशन में काम करना चाहिए। जैसे कि एक डी

0: साहब थे कृष्ण कुमार जी, तो उन्होंने ऐसे ही फीमेल फोर्टिसाइड नवा शहर में खत्म कर दी थी। उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रख लिया था कितने बच्चों का जन्म होना है, तो उसमें उस रिकॉर्ड को वो चेक करते थे। तो ये मेडिकल एसोसिएशन में ऐसा है, जो कार्ड इनके पास है, जहाँ भी वो लेप्रोसी पेशेंट जाता है वहीं उनका कार्ड देखा जाए कैसे ने दवाई ली है कि नहीं दी है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एम्प्लॉय करने वाले बंदे पर होनी चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, पहले वो देखे इसने एमडीटी दवाई ली है।
1: प्रेम सिंह जी, हमने सुना है कि आपने जो कुष्ठ रोगी हैं उनके पुनर्वास के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, अपनी पूरी संपत्ति बेच दी, जायदाद बेच दी, घर बेच दिया आपने, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह से
0: ऐसा ही हुआ था। क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यही कहा था कि काम अपने पैसों से करना, तो मैंने क्या किया, जब कोई समस्या आती थी, वह फाइनेंशियल समस्या आती थी, तो काम तो मुझे करना होता था। तो मैं जैसे एक छत को पक्का करना था, तो मैंने क्या किया उस टाइम, फिर अपना घर बेच दिया, तो वो 80,000 में बेचा था, 20,000 मैंने किसी के देने थे उधर दिए, 60,000 में उनका काम पूरा करवा दिया। ऐसे ही एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक कुछ राशनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की।

0: आती थी तो काम से मुझे करना होता था। तो मैं जैसे एक छत को पक्का करना था तो मैंने क्या किया उस टाइम, फिर अपना घर बेच दिया। तो वो 80,000 में बेचा था, 20,000 मैंने किसी के देने थे उधर लिए, 60,000 में उनका काम पूरा करवा दिया। ऐसे ही एक दफा मैं बिजली का बिल देने जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक कुछ शासनों का फोन आ गया कि हमारी मोटर खराब हो गई है बिजली की, तो इनको ठीक कराओ। तो हमने कहा चलो कल को मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो वो बिल मैंने नहीं दिया, उनकी मोटर ठीक करा दी। तो दो दिन के बाद उन्होंने मेरा बिजली का कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन काटने से हम दो तीन दिन अंधेरे में रहे, फिर पैसे अरेंज करके हमने फिर दोबारा उसको रिकनेक्ट किया। तो ऐसा कि हमने सोचा है कुर्बानी से ही सब कुछ बन सकता है, अगर अपना आप कुर्बान करेंगे तब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे।
1: जी आप इतना कुछ कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों के लिए, कभी आपको फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो?
0: फैमिली की तरफ से ऐसा था कि मैं उनके पैसे खर्च देता था, जैसे मैं अपने घर वाले के एक बार जेवर बेच दिए तो थोड़ा सा महसूस तो होता है, तो बाद में उसे मना लिया मैंने, मैं कह ये मैंने ये मेरा वेस्ट नहीं जाएगा। तो उनको मेरे वाइफ को भी अपनी माता के समान समझते, मैं कह तेरे को माता कहते हैं ना इसलिए ठीक हुआ है, तो फिर मिल जाएंगे, हो गए नहीं मिले तब भी कोई बात नहीं, हमने काम कर दिया।
1: आपने अपनी वाइफ के जेवर किस लिए बेचे थे?
0: ये भी एक जगह कुछ रोगी उसको पट्टियां वगैरह देनी थी, कई जगह से डिमांड्स आई थी और काम भी करने थे, उनके कुछ बाथरूम बनने थे, तो इसलिए मैंने वो बेच दिए।
1: जी और दूसरे फैमिली मेंबर्स से कभी किसी तरह का कोई विरोध का सामना करना पड़ा हो आपको? क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि वो कुष्ठ को छुआछूत का रोग मानते हैं, कभी आपको इस तरह की बात का सामना करना पड़ा हो?
0: हाँ ऐसे है, मैं अपनी मदर के पो के फंक्शन पर कुष्ठ रोगियों से बुलाया था वहाँ, तो वो लोग कहने लगे कि इनको जुदे बर्तनों में खाना खिलाओ, हम उस बर्तन में खाना नहीं खाएंगे। मैं उनको कहा ये बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी तरह है, यही प्रूव करना चाहता था मैं, इसका सबूत देना चाहता था कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक है और इनको एमडीटी दवाई दी जा चुकी है और ये 100% ठीक है। तो वो कहते फिर हम आपका खाना नहीं खाएंगे, ऐसे एक दिक्कत थी। हमने कहा कि हम तो इनके लिए काम करते हैं तो इनको हम आपके लिए इनको छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही जो मेरे कई रिलेटिव्स कई फ्रेंड्स इवन मेरे ब्रदर सिस्टर भी मुझे छोड़ गए हैं, वो उन्होंने अपने किसी ब्याह में मुझे बुलाया नहीं। पॉइंट मेन ये है कि मैं कुछ रोगियों के लिए काम करता हूँ, सोचते हैं शायद इसको कोई ऐसा रोग लग ना गया हो, वैसा ऐसा मैंने प्रूव किया कि रोग स्पष्ट से होता ही नहीं।
1: जी प्रेम सिंह जी आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: ये दो आंखें 12 हाथ का ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
1: जी प्रेम सिंह जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगी नामा, FM 107.2, न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in के लाइव स्ट्रीमिंग पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कुष्ठ रोगियों के मसीहा श्री प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी, आप बता रहे थे कि आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है साथ साथ, और आपने बताया कि किस तरह से आप 30 साल से कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं। आपने अपना घर बेच दिया, अपनी पत्नी के गहने बेच दिए, और क्या क्या किया आपने?
1: जो भी काम किया वो अपने ही पॉकेट से किया। मैं काम करता था, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑर्डर पंजाब के दफ्तर में काम करता था
0: जी।
1: तो मैंने जब ये काम शुरू किया, पहले उस टाइम सीनियर एडिटर था, फिर मैं सेक्शन ऑफिसर बन गया। तो मैंने जो काम शुरू किया तो मैं अपना जी फंड निकलवा के खर्चता रहा। तो मैं बार बार जब जी फंड लेता था, बार बार तो दे नहीं सकते, दो बार दे सकते थे, पर ऑफिसर को पता होता था कि इसकी कोई डिमांड आ गई होगी, उस बार भी स्पेशल केस जी फंड दे देते थे। तो लास्ट में मेरे पास कोई जी फंड नहीं था, मैं साथ के साथ खर्चता रहा। उसके बाद फिर एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे जी फंड में कोई पैसा ही नहीं था। तो फिर मैंने आज से 20 साल पहले भी 1,00,000 एक बैंक से लोन लिया था। तो उस टाइम उसकी किस्त मेरी तनख्वाह में से कटती रही। तो बाद में ऐसे मैं ये तो सोचा ही हुआ था कि लोन तो मैं ले ही सकता हूँ। तो अब 2 साल पहले भी मैंने 5.5 लाख रुपया लोन लिया, पेंशन लोन था वो
0: जी।
1: तो वो उनको पता नहीं चला, घर वालों को भी, इसने क्या किया। वो कह रहे थे ये पेंशन कम क्यों आती है। तो मैंने कहा वैसे को काट लेते हैं ऐसे। तो उसके बाद फिर हमें समस्या पड़ गई। तो मैंने 5 महीने पहले फिर 2.5 लाख और लोन लिया पेंशन पर। तो अब 17,000 रुपया मेरी पेंशन में से ये काटती है किस्त। तो हमने कहा हम थोड़ा खा लेंगे, पर अपना मिशन को ऐसे पूरा करने के लिए ऐसा किया
0: जी। बहुत बड़ी बात है प्रेम सिंह जी, और आपको हम आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से सल्यूट करते हैं कि आप इतना अच्छा और नेक काम कर रहे हैं, और इस नेक काम के लिए आपने कितनी कुर्बानियां दी। प्रेम सिंह जी, बच्चों की तरफ से कभी कोई विरोध हुआ हो या नाराजगी कभी हुई हो? क्योंकि बच्चों की डिमांड्स आज के जमाने में बहुत ज्यादा होती हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें ये भी चाहिए, खिलौने चाहिए, या इस तरह का कभी कुछ हुआ हो, बच्चों ने कभी शिकायत की हो?
1: पहले बच्चे शिकायत करते थे कि पापा ऐसे है, जितना हो सकता हो आप उतना करो। उतना होता ही नहीं था, काम तो करना होता था। तो फिर मेरे एक लड़के को मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कराया, उसको एक्सपर्ट बना दिया, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट
0: जी।
1: तो अब मेरे लेप्रोसी एलिमिनेशन सोसाइटी की प्रेसिडेंट के तौर पर वो काम कर रही है। वो एलिमिनेशन पर बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है। एपिडेमोलॉजी जो है ना, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, ये इसका लेप्रोसी का मेन विषय है। इस पर जब डाटा ही नहीं होता, जब पता ही नहीं लगता कितना डाटा कितने आए, तो ये तो वो लोग हैं लेप्रोसी पेशेंट्स जो आ रहे हैं अस्पतालों में, जिनको के डिटेक्ट हो चुका, जो के मान चुके हैं कि अब हम डरते नहीं। बहुत से लोग और भी हैं, उनको डोर टू डोर कन्वेंसिंग करनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल सही कहा प्रेम सिंह जी। अगर हम मरीजों के उपचार और उनके पुनर्वास की बात करें, तो आप अब तक कितने मरीज आपके पास आए और उनका आपने इलाज करवाया, और उसके साथ साथ उनके खाने की भी आप लोग व्यवस्था करते हैं?
1: हमने 1,000 कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए काम किया। तो उसमें 332 पेशेंट थे जो डिटेक्ट हुए
0: जी।
1: तो वो अस्पताल में जाके ठीक हो चुके हैं। बाद में उनको देखना भी होता है कि दवाई खा रहे हैं कि नहीं। हमने 1,000 कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए काम किया
0: जी। तो ये प्रेम सिंह जी, आपको आपके काम के लिए भारत सरकार की ओर से आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: ये वयोश्रेष्ठ सम्मान है जो कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है, जिसमें मैंने जो काम किया उसमें कई खतरे थे। ये मुझे लेप्रोसी हो सकती थी, और लेप्रोसी पेशेंट के काम करने के लिए तो लोग थोड़ा दूर रहते थे
0: जी।
1: ये भी था इसमें। तो गवर्नमेंट ने मुझे इसके लिए 3 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मुझे राष्ट्रपति साहब ने मुझे सम्मानित किया था। ऐसे इससे पहले स्टेट अवार्ड मिला था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो कुष्ठ रोगियों की भलाई के लिए था, 2001 में मिला था
0: जी।
1: तो 2002 में

0: माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों से मुझे नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन मिला था
1: जी।
0: 2004 में ब्रेवरी अवार्ड मिला था जो कि सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जो मेरा काम था ये उसके लिए मिला था ये। तो 2005 में एक चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जांबाज। 3 अक्टूबर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने नेशनल अवार्ड फॉर सीनियर सिटीजन से सम्मानित किया था। यह अवार्ड शौर्य और बहादुरी की कैटेगरी में दिया गया था
1: जी। प्रेम सिंह जी, आज बहुत से लोगों में भ्रम है, कई सारी भ्रांतियां हैं कुष्ठ रोग को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, कुष्ठ रोग को पिछले जन्म का श्राप माना गया है और दैवीय प्रकोप माना जाता है, ऐसा नहीं है। ये तो जीवाणु रोग है जो मल्टी ड्रग थेरेपी है इसको 100% ठीक कर देती है। ये धारणा खत्म नहीं हो रही। हमारा जो ज्यादा काम ये है कि हम इस धारणा को खत्म करना चाहते हैं। उन्मूलन तो खत्म हो सकता है, हो जाएगा। जब ये धारणा खत्म हो जाएगी तो वो समाज की मुख्य धारा में आज आ जाएंगे और हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनका पुनर्वास होकर वो समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और लोग मानने लगे कि ये एक श्राप नहीं है
1: जी। बिल्कुल, आप कुष्ठ रोगियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं, कुष्ठ रोगियों को दवाइयाँ और आर्थिक सहायता देने के अलावा आप लोग और क्या उनके लिए सुविधाएं देते
0: हैं? हम उनसे मिलते हैं, उनसे बैठते हैं, ऐसे जैसे हमारा वो परिवार है तो मुझे वो सारी बात बता देते हैं। जैसे रोपड़ के कुछ रोगी कह रहे थे हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बना, तो हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया और गवर्नमेंट ने उस पर पूरा सहयोग देकर उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की है।
1: प्रेम सिंह जी, सन 1985 में वोटिंग के दौरान आपको कोई घटना याद आ रही हो?
0: अम्बाला कैंट में कुछ रोगियों के जुदा बूथ बना दिया गया था
1: जी।
0: तो ये डिस्क्रिमिनेशन थी बहुत बड़ी, तो मैंने ये टेकअप कर लिया इलेक्शन कमीशन के साथ। उन्होंने इमीडिएट एक्शन लेकर उसको बूथ को हटाकर उनको दूसरे आम लोगों की लाइन में वोटें डालने का हक दिया। तो मैं ये मैटर ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के नोट्स में भी लाया था
1: जी।
0: उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। गवर्नमेंट तो काम करती है, एक गवर्नमेंट को चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को जो कुछ रोगियों को डिस्क्रिमिनेट करता है उनको लिए एक स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन बनानी चाहिए। ऐसा एक्ट बनाए जिससे जो कुष्ठ रोगियों के प्रति डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसमें एक बात और है कि हम अकेले अपना काम नहीं कर सकते थे, हमने दूसरे एनजीओज हैं उसकी मदद ली। जैसे जलंधर में पाल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जनरल सेक्रेटरी बरिंदर सिंह, उन्होंने कई सेमिनार किए, डोर टू डोर कन्वेंसिंग हमें बुलाकर की, तो हम उनसे मिलकर भी काम कर लेते थे। जैसे जलंधर का काम है या नजदीक का काम है तो उन्होंने भी उस पर बहुत काम किया, तो जागरूकता के लिए काम किया। उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए और मेरे साथ इंटरेक्शन कराया। मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया कि आप उनके बच्चों को नौकरी दे दो और जब बच्चे इकोनॉमिकली साउंड हो जाएंगे तो इनका ये मांगेंगे नहीं। मेन इनका मेन प्रॉब्लम है कि ये बैक करते हैं जिससे उनका मोरल डाउन हो जाता है। जैसे मैं एक कुछ राशन में गया हुआ था, मैंने कहा अभी बैठो मैंने आपसे बात करनी है। कहते साहब आपको क्या बताएं, हमें तो मांग के खाना होता है, हमने जाना है। गवर्नमेंट को चाहिए इनके हरेक कुछ राशन में मोमबत्ती मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, बास्केट मेकिंग, ऐसे प्रोजेक्ट लगाने चाहिए। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए इनको लोन दे दिए जाएं तो इनका स्टैंडर्ड अपने आप पूरा हो जाएगा
1: जी। प्रेम सिंह जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर एक और गीत आपकी पसंद का आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: इतनी शक्ति हमें देना दाता,
1: अंकुश फिल्म का
0: गीत सुना दो
1: जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने अपने मन का विश्वास मजबूत किया हुआ है, ऐसे ही हम सबका विश्वास जो है वो मजबूत रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मन जीते जग जीत। आइए मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का अंकुश फिल्म का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगी नामा FM 107.2 न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in के लाइव स्ट्रीमिंग पर। और आज जिंदगी नामा प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले श्री प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, क्योंकि आप कुष्ठ रोगियों की इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए उनकी सहायता कर रहे हैं, आप उनको राशन भी देते हैं?
1: कभी कभी जब मेरा पैसा बच जाए। अब मैंने ऐसे कुष्ठ निवारण संघ को एक लेटर लिखा था, अम्बाला कैंट में राशन मिल रहा था, उसी तर्ज पर सारे कुष्ठ रोगियों को राशन दे देना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं से भी मैं टेकअप करने लगा हूँ। मुक्सर में धार्मिक संस्थाओं ने उनको राशन दे दिया था, कम से कम इनको एक टाइम का राशन तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि जो लेडीज हैं बहुत लेट उन्होंने अपना इलाज कराया। आमतौर पर जो लेडीज हैं 60% से ज्यादा उनके हाथ पांव नहीं है, वो कैसे रोटी बनाएंगे? इनको अगर राशन मिल जाता है तो इनकी समस्या ही हल हो जाएगी, फिर मांगने जाएंगे ही नहीं। और अगर इनके पास कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी जाती तो इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर हो जाएगी, तो उससे ये काम करेंगे और शान से जिएंगे।
0: जी बिल्कुल। प्रेम सिंह जी, आज क्योंकि बहुत से हमारे सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप हमारे सभी सुनने वालों को कुष्ठ रोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: कुष्ठ रोग का खत्म होना, जो रेडिकेशन है, ये तो हो रही है, तो इसमें मेन जो लेप्रोसी पेशेंट्स स्टिग्माटाइज्ड हैं, इसको दूर करने के लिए मेन काम होना चाहिए। जो बहिष्कार कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए। हर एक कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी शहर से 4 मील क्यों मिलती है? क्योंकि उन शहर से निकाल दिया गया है, ये गलत बात है हमारी सोसाइटी की, समाज की। तो हमारे समाज को चाहिए कि इनको दोबारा मुख्य धारा में लाएं। कुछ बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और उनको भी काम मिलना चाहिए। वो उनके एम्प्लॉयमेंट पर भी उनके साथ बितकरा होता है और उनके बच्चों के दाखिल होने में स्कूल में बितकरा है। अब तो हमने उनको कहा है कि आप अपने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कराएं। तो ऐसे मैं भी एक ऐसा होम बनाना चाहता था, लेप्रोसी होम, जिसमें कुछ रोगियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए, उनके बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाए और उनको एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए।
0: जी,
1: जैसे महात्मा गांधी जी ने कुछ रोगियों के लिए बहुत काम किया था, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो उन्होंने काम किया उनके फुटप्रिंट्स पर मैं भी चलूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सा भ्रम तो मिटा ही

0: क्या था, खुद जो काम करते थे वो कुछ रोगियों की सेवा करते थे वो।
1: बिल्कुल।
0: बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कुछ रोग हो जाता है ऐसे मत समझो ये ठीक नहीं होगा, और डरो मत, जब ये अस्पताल में जाके ठीक हो जाएगा और 100% ठीक हो जाएगा, और जितना जल्दी आप अस्पताल में आओगे उतनी जल्दी आपके हाथ पांव डिफॉर्मिटी बच जाएगी और नर्व डैमेज नहीं होगी। अगर नर्व डैमेज करने से आप बाद में जाते हैं तो फिर आपका नुकसान हो सकता है, आंखों का नुकसान हो सकता है, चमड़ी का नुकसान हो सकता है, नाक का नुकसान हो सकता है, पेरिफेरी नर्व और नुकसान हो सकता है।
1: प्रेम सिंह जी, हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से इन रोगियों की सेवा करते रहें और आपको फंड्स जो हैं वो मिलते रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कुछ रोगियों का इलाज करवा पाएं और उनके पुनर्वास में उनकी मदद कर सकें। प्रेम सिंह जी, आप जिंदगीनामा प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू जी।
2: दोस्तों, आज यादों का कारवां में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने वाले पद्मश्री प्रेम सिंह की कहानी उन्हीं की जुबानी। यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे कोई यादगार पूर्व प्रसारित कार्यक्रम के साथ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।
3: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। वक्त है फिल्म संगीत का। आगाज करते हैं हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म के गीत के साथ। आवाजें उदित नारायण और शिवांगी की, गीत के बोल मदस्सर अजीज के, संगीत सोहिल सेन का।

0: मोहल्ला 80 फिल्म का आपने गीत सुना मधुश्री और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल गुलजार के थे, संगीत अमोद भट्ट का।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: फिल्म संगीत का आप आनंद उठा रहे हैं और आपको अब सुनवा रहे हैं हम पागलपंती फिल्म का गीत, नक्काश अजीज, नीति मोहन और नईम शाह की आवाजों में। गीत के बोल अराफात महमूद के लिखे हैं और संगीत से सजाया है नईम शब्बीर ने।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: जीरो फिल्म का आपने गीत सुना सुखविंदर सिंह और दिव्या कुमार की आवाजों में। गीत के बोल इरशाद कामिल के थे, संगीत अजय अतुल का।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस, ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्ता लागू।
0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का आप आनंद उठा रहे हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं हम दे दे प्यार दे फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत के बोल कुणाल वर्मा ने लिखे, संगीत से सजाया है अमाल मलिक ने।

और श्रोताओं, फिल्म तेरी भाभी है पगली से हम आपको फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें मिक्का और आनिया की, गीत के बोल अतिया सईद ने लिखे हैं, संगीतकार अनामिका चौहान।

श्रोताओं, इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं होता है समाप्त। FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय

0: से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवन करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

जमाने को दिखाना है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर

0: नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक साहित्य और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़। आकाशवाणी के चंडीगढ़ के इंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। आपसे कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित होंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में।

कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम त्रिवेणी प्रसारित किया जाएगा दिन में 2 बजे। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनवाया जाएगा दिन में 3 बजे शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत। आज सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में रीमा अमरापुरकर से यूनस खान की बातचीत का 3रा भाग प्रसारित किया जाएगा। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित होगा शाम 5:20 पर अमृतवाणी। ये कार्यक्रम होगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। कार्यक्रम हवा महल होगा रात 8 बजे। 8:15 पर सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम निर्देशक राजकुमार संतोषी पर केंद्रित रहेगा।

0: 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। कल राजस्थान में श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज की खरीद के मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। हरियाणा में बहादुरगढ़ पुलिस के विशेष कार्यबल तथा दिल्ली पुलिस के गुप्तचर रोधी विशेष प्रकोष्ठ की संयुक्त कार्रवाई में आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। दोनों हांसी के चर्चित जिम संचालक कपिल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ क्षेत्र में उस समय घेरा गया जब वो किसी गंभीर आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने पुलिस के दल पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ में दोनों आरोपी तथा अंकित नाम का एक पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान 4 पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी जिससे उनकी जान बच गई। उपचार के दौरान दोनों इनामी आरोपियों की मौत हो गई जबकि घायल पुलिस कर्मचारी की हालत स्थिर है। मारे गए आरोपियों की पहचान जिला हिसार में टिब्बा दानशेर निवासी, गांव जाखोड़ निवासी हिमांशु के तौर पर हुई है। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप हरियाणा पुलिस संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले प्रत्येक अपराधी के विरुद्ध पूरी दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई कर रही है।

हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वल्लभगढ़ के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आज सुबह पंडित प्लेस तिगांव रोड के निकट बड़ी सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस परियोजना पर लगभग 75 लाख रुपए की लागत आएगी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून के आगमन के बाद कई जगह हुई बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली है, लेकिन उमस में भी वृद्धि हुई है। मानसून की इस वर्षा से किसानों को भी फसल की बुआई में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: @ARNewsLondon ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़। आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विदाई फिल्म के गीत से। आवाज है किशोर कुमार की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कसौटी फिल्म का गीत। इसे गाया है किशोर कुमार ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कुंवारा बाप फिल्म का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, महमूद और साथियों की।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सफर सुरीला सा। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्ना डे, आशा भोसले, बत्तीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया, अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूं जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया, पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहां है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना, इस फॉर्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का जरूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता, हमारे यहाँ बाजार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई, इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे कॉल साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिजायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है, सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। हमारे कॉल साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान जरूरत से ज्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे कॉल साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के जमाना देखा, तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे माफ कीजिएगा, भाई सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अदद नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद यही शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने कि आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कहने कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठा हूँ। पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है, तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं वो बताने कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है।

0: कि उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया. फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना. के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज में आपने ये गीत सुना. इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत. कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं. हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ. भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है. हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं. कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है. मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है. बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं. आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा. बारिक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूं कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूं. भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है. इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं. तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं. हमें बताइए कि एक किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं.

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए। हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम

नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण

0: ट्रेन पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: दिने दिने वो मारा ढाला पे है, जैसे पानी में धूड़ा ढेला।
5: तीजन
4: मदन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाई

0: परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, साहिल उद्यानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, हसरत जयपुरी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार, होशियार।

0: जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम है राजकुमार। हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: मनचाहेगी।
1: मनचाहेगी
0: मनचाहेगी।

0: कार्यक्रम मंचा है गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और कार्यक्रम में पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: कार्यक्रम मंचा है गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम की पहली पसंद किसकी पूरी होने वाली है ये आपको बता देते हैं। शिकार फिल्म के गीत की फरमाइश आई है अमरनाथ, सूर्यकांत, सोम और सुरेश की सुकमा छत्तीसगढ़ से, साथ ही हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने भी फरमाइश की शिकार फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आप सभी की पसंद पर सुनिए ये गीत जिसे लिखा है असरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म शिकार।

चले। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

0: अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचनगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपकी पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

0: मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत, जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाला ही बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैले के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
2: कौन

0: लीलावती।
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों?
2: मित्र, अब क्या किया जाए?
0: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
1: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र के साथ पूरी।
3: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
4: भला हम कौन होती हैं
3: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
4: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
0: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
5: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
5: परंतु देवी,
1: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
5: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
1: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़िका, हम चले यहाँ।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी ईरावती ने महाराज।
1: लगता है ईरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी ईरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। मैं नाक को बांध करके नाग मुद्रा लेके
1: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे श्यारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल शरीर का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए, ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।

0: बोत लिया।
1: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
0: मेरा तो अंदर ना करता जा रहा है, सारे शरीर में जलता जा रहा है।
2: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
3: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
0: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सुना तो मेरे बात, मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
1: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
4: महाराज, महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
1: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
4: देव की कैसी आज्ञा।
0: कौन जाने मैं जीव या मरू, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुके हो वो क्षमा कीजिए।
2: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
4: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
2: मेरी मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
4: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए।
5: जैसे ये अंगूठी मुझे दो। कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमदवन में पहुंचा देना, समझे?

0: कौन? अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया। और
0: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: की मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में जी भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी,
0: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये
0: छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
0: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सन ही जान पड़ता है। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों

0: तिल अपनी देह जलाऊं?
1: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
2: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रूठ गई? तुम्हारा ये अनन्य दास्तु तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रूठ गई थी? स्वामी की जय हो।
2: प्रिय,
3: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
2: मित्र, क्या बताऊं, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे। सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई। महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
4: अरे बकला वालिका, उधर देख, उस नन्हे अशोक के पत्तों को वो हिरन चले जा रहा है। आ, उसे भगाने चल चले।
3: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र ग्रह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
5: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांस नहीं काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हाल चाल जान लें। और
5: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
5: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही चक्कर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरी से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए, आर्य गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
1: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की उठ में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
5: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: मैं कहां है सांप?
5: महाराज आगे न जाइए, वहां एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
1: महाराज रुकिए। कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी इरावती,
1: सच्ची बकुलावली का ये कैसा है? बकुलावली का तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया।
2: ओह, तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा हमने आके रहा?
6: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है।

0: मिका, तू लौट आई?
1: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई। उसने बताया, आइए इधर कान में सुनिए।
2: सेकी बगुला वाली का, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
3: अच्छा, तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मान नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
3: मैं सब समझती हूँ। मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ। और
5: सुनो, राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूलने का उत्सव मनाएंगी।
6: सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोट के कलाकार सेवक भेजे हैं। विदिशापति विदर्भ विजेता महाराज अग्निमित्र की जय।

0: विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में बधा रहे।
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर
1: प्रमगमन उत्सव में।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियां आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आके देवी, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज,

0: कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य स्मृति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती आप?
0: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिकी जान पड़ती हैं।
3: हाँ वही है। प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
4: मंत्री जी ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यहाँ तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया आप भी तो।
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
4: अरे श्री क्या हुआ? क्या हम लोग एक रुक क्यों गए?
5: जान जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
4: वही हुआ ना जिसका भय था। ठाकुर ने खेल दिया है।
6: चाहिए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
2: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
2: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
2: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
7: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
7: जो महाराज की इच्छा।
3: राजकुमारी ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी रात का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए यही बहुत है।
7: महाराज की जय हो।

0: आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
2: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
3: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों के ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
2: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
1: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञसेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
2: जयसेन।
4: आज्ञा देवी।
2: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था। हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, फिर कोई विघ्न न डाले।
4: देवी की जैसी आज्ञा।
2: मालविका इधर आओ। प्रस्तुत हूँ देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया, उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं? मालविका को ग्रहण कीजिए।
5: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजाई करते हैं।
6: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
7: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे

0: से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व, पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे, उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में।
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
2: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वाज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था, उसका भी एक किस्सा है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं, बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है,
2: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
2: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल

0: है, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है. अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं. कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी. लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे.
1: यहां गाना सुनते हैं.

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में

0: पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे, और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है. तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा. ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी. और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे. लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है. तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने. और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व, जो फेमिनिन कैरेक्टर था, वैसा रोल किया हुआ था. ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है. तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे. हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर. और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी.
1: ओहो हो हो,
0: और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा ची काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह. तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज. दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी.
1: कि एक बार फिर से वो जनाना रोल,
0: हाँ, जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी. लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था. और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में. तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: बहुत,
1: आज तक उसकी रीलें चलती हैं, और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे. लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है.
0: ओह यस ऑफ कोर्स. हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं
1: जो 80s वाला दौर.
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर. सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई. तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म.
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: है. वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है. और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुंदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं. तो तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट. कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है. हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से. और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे. तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी. तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो. तो फिर अल्टीमेट

0: इनडायरेक्टली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी. तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे. तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे.
1: हाँ, हाँ.
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है. इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है. और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में.
1: और बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा काला नाग.
1: हाँ.
0: काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू.
1: हाँ, और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग काला नाग. सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो. आई विल नेवर फॉरगेट ये. बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना.
1: हाँ बिल्कुल.
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था. और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे.
1: अच्छा.
0: हाँ. और दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग.
1: अरे गजब.
0: तो बहुत मजा आता था. तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे. तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी.
1: बाप रे.
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे. और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में. बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे. तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में. तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के.
1: बिल्कुल. उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं. हाँ. जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक. हाँ. वाला. और उनकी आंखों में वो डरावना.
0: ओ, मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई. मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती. मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी. तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है.
1: सिर्फ सुना है.
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म. और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की.
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश.
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है.
0: करेक्ट.
1: वहां
0: करेक्ट.
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो. हाँ, आगे बढ़ती. हाँ. है. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े. लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ.
0: करेक्ट.
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था.
0: बहुत ही. और उस समय
1: डरावना. और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की. बहुत ज्यादा नफरत की. लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स.
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था. आखिरी रास्ता जब आई थी उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी. तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे. राइट. सब लोगों को ऐसा जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे. और पापा बहुत कूल हुआ करते थे. मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे. मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे क्या करना है. उसमें वो रहते थे.
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन. और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं. वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के वो उसमें पूरा नजर आता है.
0: पूरा. दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे. वो आप मस्त रहते थे. उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे अभी कैसे करना है अपना फर्ज निभाओ. उसमें वो रहते थे. तो इसलिए कोई भी हो सामने धर्म जी हो. हालांकि धर्म जी या अमित जी. धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे. राइट. तो
1: बिल्कुल.
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है मैं मेरा काम करूंगा मैं हट जाऊंगा खत्म के बाद.

0: और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफ कोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल
0: तो
1: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है।
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अब मैं जितनी
1: अच्छा
0: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल, सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से, हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा,
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद बाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की?
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया वो हमें जो

0: कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी, इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, या आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने बैठेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: सख्त मनाही, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है, और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़, एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे।
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन

0: नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट, कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
1: तो
0: काम किया,
1: बिंदु जी के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: दिखाऊंगी,
0: ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिकॉज
0: जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: आने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी,
1: बिल्कुल
0: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी, दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी,
1: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
1: हाँ।
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
0: बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
1: राइट,
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
1: जी।
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है। तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट,
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली। और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म

0: ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जययू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है,
1: जी
0: जो लोग देख पाए उन्होंने ज़रूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी, क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है, और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है, और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं,
0: श्योर
1: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5:00 को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव

0: संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में ये गीत।

ये गीत अभी आपने सुना साजन फिल्म से। इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। सक्सेस मंत्र, सपने देखना न छोड़े, सपने देखेंगे तभी पूरे होंगे। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के स्टेबल में काम किया करता था। वह देखा करता था कि किसी तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वो मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वो उनका मालिक भी बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वो लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें ये होगा कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और साथ ही अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपने वाले रैंच की फोटो भी बना दी और लड़के ने पूरे मन के साथ वो निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दी। शिक्षक ने सभी कॉपियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई मार्क्स नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता वो कुछ छोटा मोटा लेख लिखता, क्योंकि तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसीलिए ऐसा संभव नहीं होता। तो फिर भी मैं तुम्हें चाहे तो तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूँ।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 0951522703 9। आई रिपीट

0: 09515227039 और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट, feedback@gmail.com।
1: लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है, मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ, और अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूँ। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतर्राष्ट्रीय घोड़ दौड़ देख रहा था, तो दौड़ के पूरे हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस दुनिया में 90% लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं। जानना चाहोगे कैसे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि इनके सपने क्या है। इनके जीवन में सिर्फ जरूरतें हैं, शिकायतें हैं और अपने आप के लिए झूठी तसल्ली है। इन्होंने समझौता कर लिया है। ये सब डर की वजह से बिना कोशिश किए ही हार मान बैठे हैं। ये लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये सब के सब वो नहीं कर रहे हैं जो करने की क्षमता इनमें है। और जब हम हालातों से समझौता कर लेते हैं तो जिंदगी बड़ी नीरस हो जाती है। तो दोस्तों, आइए सुनाता हूँ एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे लिसनर का। वह लिखते हैं, पिछले दिनों मैं एक सेमिनार के लिए जयपुर से दिल्ली जा रहा था। ट्रेन में मेरे सामने वाले बर्थ पर रोहित नाम के एक युवक से थोड़ी ही देर में मेरी अच्छी जान पहचान हो गई। उसने बताया वे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और ये पूरा होते ही कोई जॉब ज्वाइन कर लेगा। जब मैंने उससे पूछा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, तो काफी देर सोचने के बाद बोला, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। लेकिन क्या, मैंने पूछा, तो उसने कहा कि घर वाले इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं, वे चाहते हैं कि मैं कोई अच्छा सा जॉब करूं, और इतना कहकर वो चुप हो गया। लेकिन जो चमक उसके चेहरे पर पायलट बनने वाले सपने को बहुत वक्त थी, वो अब गायब हो चुकी थी। और लगभग 3 घंटे की बातचीत से मेरा ध्यान उन मुद्दे पर गया जिनकी वजह से हम अपने सपनों को जीना छोड़ देते हैं। खुद पर विश्वास न होना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपने सपने को सिर्फ सपना समझ हमेशा के लिए भूल जाते हैं। हम सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन अंदर से हम बहुत डरे हुए हैं और उस सपने को लेकर खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम ये कर पाते हैं या नहीं। और जब हम स्वयं ही पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पाते हैं, दूसरों को क्या बताएंगे। नतीजा, बिना खुद पर विश्वास के जब हम दूसरों को अपने सपने बताते हैं तो वो आसानी से हमें डरा देते हैं और हम उसी 90% वाली श्रेणी में रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल से, सबसे बड़ा रोग क्या होगा, लोग। ये हमारे बहुत बड़ा डर है और इस वजह से हम अपने सपनों की दिशा में कदम उठाने से पहले हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा जब वह मुझे ये करते हुए देखेगा, क्या जवाब दूंगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। आप जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और यदि आप पर हंसते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो यकीन कीजिए ये सब भी उस 90% वाले श्रेणी में ही आएंगे जो एक तय दायरे में ही सोच पाते हैं। पर तुम्हारी पहचान उनकी सोच से नहीं परंतु तुम्हारी सोच से बनेगी। क्या होगा यदि मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो, क्या होगा यदि मेरा बिजनेस नहीं चल पाया तो, क्या होगा यदि उसने मेरा प्रस्ताव नहीं माना तो, क्या क्या क्या। इतने सारे सवाल और इनकी वजह असफल होने का डर। ये सारे डर जो कि काल्पनिक है, लेकिन हम इन पर इतना ध्यान देते हैं कि ये हकीकत में बदलने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो वो काम शुरू ही नहीं कर पाते हैं, वजह हमारे ये डर की कहीं असफल न हो जाए। आप अभी कौन से सफल हो, जो असफल हो जाओगे, या यदि सफल हो भी तो इतिहास उठाकर देख ले कि क्या सफलता स्थायी है। और इतनी ही नहीं,

अपने इस डर की वजह से हम दोष देते हैं हालातों को, जमाने को, और कहते हैं यदि ऐसा नहीं होता तो हम ये कर लेते, वो कर लेते। ध्यान रहे, हम यदि वो चुनते हैं जो आसान है तो जिंदगी मुश्किल होगी, और यदि वो चुनते हैं जो मुश्किल है तो जिंदगी आसान होगी। सपने हमारे भी सच हो सकते हैं यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान याद रहे। अपने सपनों को लिखे, बड़ा सोचो, कुछ ऐसा जो तुम्हें पसंद हो, कुछ ऐसा जिसे दूसरों को बताते वक्त तुम में जोश आ जाए, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, कुछ ऐसा जिसके बारे में तुम बहुत पैशनेट हो और उसको अपनी व्यक्तिगत डायरी में लिख डालो। एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने कमरे में चिपका दो, और खबरदार जो ये सोचे कि किसी ने देख लिया तो ये तुम्हें रोज दिखाई देना चाहिए, ताकि एहसास दिलाता रहे कि ये तुम्हारा सपना है। तो दोस्तों, विद दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ। आज की कड़ी यही संपन्न होती है, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शाम सुहानी।

0: शाम सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। अपने लिए तो हम सब जीते हैं, मजा उसी जिंदगी का होता है जो दूसरों के काम आए। ऐसी बहुत सी शख्सियतें हैं हमारी सोसाइटी में जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रही हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड चंडीगढ़ और प्रेसिडेंट सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी श्रीमती रेनू सहगल। कैंसर सर्वाइवर भी हैं और इसके साथ साथ आप कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत काम कर रही हैं। रेनू सहगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाम सुहानी कार्यक्रम।
1: आपका बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ।
0: सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता, कहाँ बीता, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई?
1: मेरा जो जन्म स्थान है वो अम्बाला है, पर मेरा बचपन जो है, जो मेरे को बचपन की यादें हैं वो ज्यादा शिमला की हैं, अम्बाला की हैं। मेरी स्कूलिंग वहाँ हुई। मेरे फादर जो थे वो PCS में थे और उनकी ट्रांसफर होती रहती थी, तो होशियारपुर से फिर चंडीगढ़ आए, तो चंडीगढ़ के बाद हम यहीं सेटल हो गए और यहीं मेरी पढ़ाई हुई 6th class के बाद, और जॉब भी यहीं हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि चंडीगढ़ और मैं साथ साथ बड़े हुए हैं
0: जी,
1: क्योंकि जब नए नए आए थे तो चंडीगढ़ बिल्कुल बसा नहीं हुआ था, हम 58 में यहाँ आए थे
0: जी। तो रेनू जी, क्योंकि आप चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड हुई हैं चंडीगढ़ से, आप हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आर्किटेक्ट बनना क्यों चुना आपने, क्योंकि चंडीगढ़ एक वेल प्लान्ड सिटी है और ली कार्बूजिए से प्रेरित थी आप?
1: नहीं, उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था ली कार्बूजिए का। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फिल्मों का बहुत शौक था, तो एक पिक्चर देखी तेरे घर के सामने, उसमें देवानंद मेरा फेवरेट था और देवानंद उसमें आर्किटेक्ट था और वो घर बनाता है और जैसे उसकी ड्राइंगें और स्टूडियो, तो मैंने अपने मम्मी से कहा कि मैं भी आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। तो मम्मी ने तो हमें इंडिपेंडेंट पढ़ा किया, कहते अच्छा ठीक है, तो मैंने आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो हम अपनी क्लास में सिर्फ 2 लड़कियां थी, उस वक्त लड़कियां बहुत कम जाती थी

0: से, पर बहुत अच्छा रहा हमारा 5 साल का।
1: आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने ये फिल्म देखी और देवानंद से आप
0: प्रेरित हुए? 15-16 साल की रही होंगी
1: जी। तो जब आपने अपनी मदर को बताया कि आर्किटेक्ट बनना है, तो पिताजी की तरफ से किस तरह का रिस्पांस था?
0: मेरे पिताजी की बहुत यंग डेथ हो गई थी, तो वो तो चाहते थे कि मैं IAS बनूं, पर उसके बाद जो हालात डिफरेंट हो गए और मम्मी ने हमें कभी रोका नहीं किसी बात के लिए, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन के लिए, और बड़ी बहादुरी से उन्होंने 5 लड़कियों को बड़ा किया।
1: तो रेनू जी, आपने जैसे बताया कि आप 2 ही लड़कियां थी स्टूडेंट आर्किटेक्चर में, तो क्लास में किस तरह का माहौल रहता था?
0: शुरू शुरू में तो मैं बहुत ही शाय थी बात करनी किसी को, पर उसके बाद बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, बड़ा फ्रेंडली था, एक दूसरे की हेल्प करते थे, कोई ऐसी वो नहीं थी
1: जी। तो रेनू जी, आपने कैंसर के खिलाफ जंग लड़ी और आज तक लड़ रही हैं दूसरों के लिए भी, तो आप हमें ये बताएं कि कैंसर जो है वो कब डायग्नोज हुआ आपको, और कैंसर से लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके साथ किसने निभाई?
0: ऐसा है कि मैं 47 इयर्स की थी, 96 में मेरे को थोड़े सिम्टम शुरू हुए और उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया, कई लोगों ने कहा कुछ नहीं है, मुझे हल्का सा बुखार रहता था, कुछ नहीं है, ऐसे ही साइकोलॉजिकल है, ये है, ग्लो पी लो। मगर मेरी छोटी सिस्टर थी नीलू तुल्ली, उन्होंने ले गई मुझे हॉस्पिटल और वहाँ पूरे टेस्ट हुए, बड़ी मुश्किल से डायग्नोज हुआ क्योंकि बड़ा स्लो ग्रोइंग था और रेयर था। तो जब डायग्नोज होता है तो उन दिनों में तो कैंसर इतना कॉमन नहीं था और कोई इस बारे में बात भी करना पसंद नहीं, और मुझे भी यही लगता था जैसे मूवीज में देखा कि कैंसर हो गया तो उसके बाद कोई जीवन नहीं है, मैंने भी यही सोचा था कि मेरे को नहीं होगा, ऐसे हर एक को होता है ना कि मेरे साथ ऐसे नहीं होगा। मगर जब हो गया तो शुरू में तो बहुत झटका लगा, मगर धीरे धीरे डॉक्टर्स ने कहा था इसकी दवाई है, आप 60% चांसेस हैं ठीक होने के, और मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ब्रेव थे, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, और मेरी सिस्टर छोटी, सारी सिस्टर्स ने मेरे जैसे बहुत प्यार से, मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर हैं, वो मुझे रोज डायग्नोस के बाद इंजेक्शन रोज लगता था, एक दिन छोड़ के लगता था तो वो घर लगाने आती थी, और मैं उसे कहती थी इंजेक्शन से पहले तू भगवान का नाम ले और फिर लगा, तो क्योंकि मैं तो इंजेक्शन वगैरह से बहुत डरती थी उससे पहले, और डॉक्टर्स PGI के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, तो कभी कभी घबरा जाती थी, तो वो मुझे, मेरे हस्बैंड कहते थे कि टफ, इसको रिपीट करो, टफ गेट गोइंग व्हेन गोइंग गेट टफ, कि इसको बारी बारी बोलो
1: जी।
0: तो उसके कैंसर से फाइट के बाद मुझे लगा कि मैं ब्रेव हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं सोचती थी कि मैं बहुत नाजुक हूँ, बहुत डेलिकेट हूँ, मगर उसके बाद पता लगा कि मेरे में हिम्मत है और मैं लड़ सकती हूँ, मुश्किलों से लड़ सकती हूँ
1: जी। रेनू जी, क्योंकि जब किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो वो बहुत ही मुश्किल दौर होता है, तो ये जो मुश्किल दौर था, आप बता रही हैं कि आपके हस्बैंड ने आपको बहुत प्रेरित किया, तो उनके अलावा आपके घर में कौन सा ऐसा सदस्य था, या आपकी कोई सहेली, या सोसाइटी में किसने आपकी ज्यादा सहायता की?
0: मेरी बहनों ने, मेरी मदर ने, मेरी मदर खुद ही बहुत ब्रेव लेडी थी उन्होंने, और मेरे सामने ये था कि किसी ने सीरियस नहीं रहना, सबने नॉर्मल बिहेव करना है, अलग से जाके वो थोड़ा सैड हो जाते थे पर मेरे सामने नहीं, और उनका जो प्यार था मेरी मदर और सिस्टर्स का और मेरी फ्रेंड्स का, प्रेयर का, और मैं प्रेयर बहुत करती थी, तो वो मेरे को था कि मैंने ठीक होना है, तो तब मुझे पता लगा जीवन का जो असली मूल्य है, कि जीवन मूल्यवान है, उससे पहले मैं उसकी कदर नहीं करती थी जीवन की, जब हाथ से जाने लगा तब मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू लिव, मैं जीना चाहती हूँ।
1: क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है, वो जो समय था किस तरह से आप गुजारती थी और कितनी देर आपको ये जंग लड़नी पड़ी कैंसर के साथ?
0: ये मुझे 1.5 साल इंजेक्शन लगते रहे और पैसे की भी दिक्कत आई, हमने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, और मैं पेंटिंग करती थी शुरू में, मेरे एक को कहा गया कि आप अपना मन लगाओ पेंटिंग करो, डॉक्टर्स के लिए थैंक यू कार्ड्स बनाओ, और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मेरे डॉक्टर सुभाष वर्मा।

0: थे, उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन कर लो, आपकी प्रमोशन को फर्क पड़ेगा। तो ज्वाइन कर ली। शुरू में बहुत मुश्किल आती थी, बहुत वीकनेस थी। कुलीग्स ने मेरी हेल्प की उधर जो ऑफिस में थे, और मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी हेल्प की। कई कई बीच में मुश्किलें भी आई, तो लोग हैरान होते थे कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि मुझे कैंसर है, क्योंकि आपको पता होगा उन दिनों कैसे था। अभी भी स्टिग्मा है, लोग बताते नहीं है। तो इसी को देख के मेरी छोटी बहन ने देखा, इतनी मुश्किलें आती हैं, हम तो अच्छे परिवार से हैं फिर भी हमें मुश्किल आ रही है पैसों की। उन्होंने ऐसे शुरू किया कि गरीबों के लिए, मतलब हमें कोई बात करने वाला नहीं मिलता था कि हमारे जैसा कोई और है जो ठीक हो चुका है कैंसर से। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
1: रेणु जी, एक बात मैं आपसे जो मेरे जहन में आ रही है वो पूछना चाहता हूँ कि ये जो कैंसर का दौर था, आपको जब कैंसर हुआ और वो जो आप समय बिता रही थी कैंसर से लड़ने के लिए, किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया?
0: मैं तो सुबह सुबह पाठ लगा लेती थी सुखमणि साहब का, और भगवान से बहुत प्रेयर करती थी कि मेरे को ठीक होना है। और मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर्स, मदर सब प्रेरित करती थी कि ठीक हो जाओगे। और बॉम्बे एक संस्था थी, वहाँ हमने फोन किया, वी केयर, वो शुरू शुरू में थी, चंडीगढ़ में कोई ऐसी संस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पेशेंट हैं, आपकी बीमारी जो है उससे ठीक हो चुके हैं। तो उससे हमें काफी प्रेरणा मिली।
1: जी, जिस तरह से आपने बताया कि कैंसर से लड़ते हुए बहुत सी मुश्किलों का आपको, आपके परिवार को सामना करना पड़ा, किस तरह की मुश्किलें पेश आई आपको? एक तो पैसे को लेकर आपने बोला,
0: फाइनेंशियल थी, और डर लगता था कि साइड इफेक्ट क्या होगा इसका, बाल उड़ जाते हैं, और एलोपैथिक कीमो का साइड इफेक्ट बहुत होता है, पर भगवान की दया से इतना साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और मैं अपना काम करती रही, ऑफिस का साथ साथ करती रही। और बस वीकनेस बहुत होती थी, तो मैं वो उस वक्त अपने आप को कह देती थी कि सोल्जर नेवर लीव्स द वॉर, तो लाइक अ सोल्जर आई हैव टू फाइट।
1: इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने किस तरह से अपने आप को एक फौजी की तरह तैयार किया जंग लड़ने को कैंसर के साथ। तो रेणु जी, जो आपका खान पान रहता था वो क्या नॉर्मल खान पान रहता था या खास तरह की आपको डाइट दी जाती थी?
0: नॉर्मल ही रहता था, बाहर की चीज मना की हुई थी। और वीट ग्रास मैंने बहुत लिया, किसी ने कहा था कि वीट ग्रास बहुत लिया, वो उगा के घर में और उसका जूस, उससे पता नहीं फायदा क्या हुआ, पर मुझे उसका लगता है कि उसका बहुत फायदा हुआ।
1: जी रेणु जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: अब के बरस भेज भैया को बाबू,
1: बंदिनी फिल्म का।
0: हाँ,
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड चंडीगढ़ और प्रेसिडेंट सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ श्रीमती रेनू सहगल, जो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं और इस समय कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। रेनू जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर डायग्नोज होता है लेकिन वो हिम्मत हारने लगते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, आप प्रेसिडेंट हैं सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी की, तो किस तरह से आप सहायता करती हैं कैंसर पेशेंट्स को?
1: ऐसा है कि सहायता जो सोसाइटी है, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे फ्रेंड्स, मेरे और रिलेटिव्स, उन्होंने शुरू किया था। तब 5-6 लोग थे सिर्फ। बड़ी मेहनत से उन्होंने इसको बनाया है और शॉपकीपर से जा के पैसे मांगते थे। तो अब जो है, भगवान की दया से सहायता जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे 40-50 के करीब वॉलंटियर्स हैं। हमें गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिलती, लोगों से इकट्ठे करते हैं अपने बलबूते पे, अपने हमारे वॉलंटियर्स, अपने फ्रेंड्स से और इधर से, और कई बारी लोग खुद भी आके दे जाते हैं जो ठीक होते हैं, या डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि ये जेन्युइन संस्था है, इधर दो। तो हम एक तो उनकी, हम पीजीआई में बैठते हैं डेली, बारी बारी से हर वॉलंटियर बैठता है। अभी मैं हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, तो वहाँ जैसे हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और जो डॉक्टर कहते हैं कि इनको हेल्प चाहिए, पुअर हैं और ठीक हो सकते हैं, तो हम उनको स्लिप्स देते हैं और वो केमिस्ट से जाके दवाई ले लेते हैं और केमिस्ट का हम मंथली बिल देते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कई बारी उनको हम बताते हैं कि हम ठीक हो चुके हैं, तुम भी हो जाएगा, तो उनकी चमक आंखों में, उनका एक्सप्रेशन ही बदल जाता है जब वो किसी सर्वाइवर से बात करते हैं, तो उनको बड़ी होप हो जाती है। और जो हमारी काउंसलिंग भी करते हैं, हमारे काउंसलर हैं, घर जाके भी करते हैं और उनको हिम्मत देते हैं बातचीत करके कि ठीक हो जाएगा, मनोबल उनका बढ़ाते हैं
0: जी। तो क्या उनको डायग्नोज कराने में भी सहायता करते हैं आप लोग?
1: हाँ, जैसे कोई हमारे पास आता है कि दर्द है, तो कह देते हैं कि ये वाला चेक कराओ। और अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि जो ये होमी भाभा हॉस्पिटल खुला है ना मोहाली में, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम एक महीने में 2 स्क्रीनिंग कैंप्स करते हैं। तो उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ओरल कैंसर की, क्योंकि कैंसर में अगर जल्दी पकड़ लो तो मतलब सबसे असली जो उसको हराने का है कि अर्ली डायग्नोसिस, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत हेल्प करता है। तो उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं जाके स्कूलों में कि टबैको नहीं पीना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। टबैको इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर कैंसर। और हर तरह की जैसे उनको अवेयर करते हैं स्कूल्स में, किटी पार्टीज, फैक्ट्रीज में जाके बताते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन कारण और क्या सिम्टम्स हैं जो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए
0: जी।
1: क्योंकि कई लोग जो हैं वो इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को और लेट हो जाता है तो फिर उसका क्योर मुश्किल होता है
0: जी। बहुत से ऐसे लापरवाह किस्म के लोग होते हैं, कहीं दर्द हो रहा है हाँ। तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में आपने बताया कि जितना ज्यादा देरी होगी उतना मुश्किल होगा कैंसर को हराना, तो विभिन्न कैंप्स भी आप लगाते हैं हाँ। सोसाइटीज में जाके या स्लम एरिया में जाके?
1: हाँ, हम सोसाइटीज में, कॉलेजेस में, अभी स्लम एरियाज में भी करते हैं, मगर अभी हमारा ज्यादातर हमने स्कूल्स में किया है, स्कूल टीचर्स को किया है। और पर अभी हमारा जो आगे का वो है कि हमने स्लम्स एरिया को लेना है। अब पहले करते रहे हैं, हम स्लम्स एरिया में कैंप्स भी करते रहे हैं, हेल्प भी करते रहे हैं।
0: काउंसलर्स भी हैं आपकी सोसाइटी में, तो क्या आप खुद भी काउंसलिंग करती हैं कैंसर हाँ, पेशेंट्स की?
1: हाँ जी, एक सर्वाइवर की काउंसलिंग तो बहुत मैटर करती है
0: जी, बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा,
1: क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब उनको कहते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, तुम भी हो जाओगे, तो उनकी मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है, उनके फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है।
0: तो उनके परिवार को किस तरह से आप प्रेरित करती हैं कि कैंसर को हराने में वो भी उनकी सहायता करें?
1: वो भी ऐसे ही उनसे बातचीत करके और एग्जांपल से। हम लोग साल में एक बारी सर्वाइवर्स डे मनाते हैं, उसमें जो सर्वाइवर्स हैं वो कभी नाटक, कभी फैशन शो,

0: कभी कुछ करते हैं ताकि लोगों को पता लगे जो ये भ्रम है कि कैंसर के बाद जीवन नहीं है, तो हम ये प्रूव करते हैं उससे स्टेज पे लोगों को बुला के, मतलब बहुत अच्छे सर्वाइवर्स हैं हमारे, तो फैशन शो जब करते हैं तो वो लगता है कि कैंसर के बाद भी जीवन है और महत्वपूर्ण है और बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा है।
1: रेणु जी, जब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ वो जिंदगी, और अब जब आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपने कैंसर को हरा दिया और उसके बाद आप दूसरे लोगों के लिए भी इतना काम कर रही हैं, तो उस जिंदगी में और इस जिंदगी में क्या फर्क महसूस करती हैं?
0: फर्क ये है कि मैं अब लोगों से ज्यादा जुड़ती हूँ। मैं बहुत अंतर्मुखी थी जैसे, पर अभी मैं काफी ओपन हो गई हूँ, बात खुल के करती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ, और मुझे जीवन का कोई मतलब मिल गया है कि लोगों की हेल्प, जैसे किसी को दवाई देते हैं तो उसका ना जो पूरा शरीर जैसे रिलैक्स हो जाता है, मतलब यू कैन, तुम देख सकते हो कि अभी एक लेडी थी, उसको हम कह रहे थे कि तेरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, पर उसको हमने कहा चलो आज दे देते हैं, आगे से डॉक्टर से पूछ के देंगे, तो उसका शरीर ही जैसे टेंस थी ना, एकदम ढीला हो गया शरीर के, चलो अभी तो मिल गई, तो ये इससे बहुत लाइफ को मीनिंग मिलता है।
1: जी रेणु जी, यहाँ पर आपकी पसंद का एक और गीत अपने सुनने वालों को और आपको सुनवाना चाहेंगे, तो दूसरा गीत कौन सा सुनवाएं?
0: दूसरा गीत ऐसे है कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, मेरा सफर का ये बहुत, मेरा मुझे बहुत प्रेरणा देता है ये वाला गाना, कि नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, जीवन तो चलने का नाम है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि चलने का नाम ही जीवन है, और कैंसर अगर डायग्नोस होता है तो हार के बैठना नहीं है, आपको लगातार आगे चलते रहना है और कैंसर के साथ जंग लड़नी है। आप भी सहायता कर रही हैं, पूरी सोसाइटी इनकी सहायता करती है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: है आकाशवाणी चंडीगढ़ से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शाम सुहानी और आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड चंडीगढ़ और प्रेसिडेंट सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ श्रीमती रेणु सहगल, जो खुद कैंसर सर्वाइवर हैं और इस समय कैंसर पेशेंट्स की सहायता कर रही हैं। रेणु जी, जिस तरह से आपने बताया कि आप लोग सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी में किस तरह से कैंसर पेशेंट्स की सहायता करते हैं, आप आर्थिक रूप से उनकी मदद करती हैं और इसके साथ साथ काउंसलिंग भी आप लोग करते हैं, खुद भी आप काउंसलिंग करती हैं ताकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो हर तरह से मजबूत बने और कैंसर के खिलाफ जंग लड़ने में एक फौजी की तरह डट के खड़ा रहे। तो जब किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोस होता है उस समय से लेकर कैंसर को हराने तक आप किस तरह से एक मजबूत साथी की तरह उस कैंसर पेशेंट के साथ खड़ी रहती हैं?
1: हम एक तो मेडिसिंस देते रहते हैं और उससे बातचीत करते रहते हैं कि आपने छोड़नी नहीं है।
0: कई पेशेंट्स ऐसे होते होंगे जिनको लगता होगा कि शायद अब मैं ठीक नहीं होऊंगा और कई बार उनका हौसला टूट जाता है, तो ऐसे में उनको किस तरह से मोटिवेट करती हैं, किस तरह से प्रेरित करती हैं?
1: उनको हिम्मत दे के बातों से ही प्रेरित करते हैं कि कोई नहीं, ये समय कठिन समय है, बीत जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। कई बार ऐसे होता कि हमें पता होता है कि ये ठीक नहीं होने वाले, ये अंतिम स्टेज है, तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी हम, जैसे हॉस्पिस है यहाँ पे, वहाँ लास्ट स्टेज वाले जाते हैं तो वहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं कभी, तो मुझे ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि मेरे से गलत नहीं कहा जाता कि
0: जी। तो रेणु जी, क्योंकि आपकी जो सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी है बहुत ही अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और भी लोग इसके साथ जुड़े, यंग जनरेशन इसके साथ जुड़े ताकि और ज्यादा काम हो सके कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो किस तरह से आप यंग जनरेशन को प्रेरित करती हैं कि आपकी सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी से वो लोग भी जुड़े?
1: जैसे कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके, और पहले NSS के बच्चे हमारे से जुड़ते थे, इकट्ठे करके देते थे फंड्स, और कई लोग खुद ही आते हैं, उनका जैसे आजकल तो उनका ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाती है एडमिशन वगैरह मिलने में, तो वो बच्चे आते हैं 6 महीने के लिए, तो कई यंग लोग जुड़ रहे हैं हमारे से क्योंकि हमें लगता है कि अब हमारे बाद क्या होगा सहायता का, क्योंकि मोस्टली हमारी बड़ी उम्र की लेडीज हैं, पर अभी यंग लोग भी जुड़ रहे हैं और जो आता है वो सहायता का जो मोटो है या सहायता का जो पर्पस है उसके साथ बिल्कुल मिल जाता है, कि जो भी नया आता है वो सहायता के रंग में रंग जाता है जैसे कहते हैं ना, तो वो हमें उम्मीद है कि यंग लोग जुड़ेंगे
0: जी।
1: और हमारी सहायता आगे चलती रहेगी, हमारे बाद भी चलती रहेगी
0: जी। रेणु जी, अगर कोई नौजवान आपके साथ इस कार्य में जो आप मानवता के लिए कर रही हैं जुड़ना चाहता है तो किस तरह से वो लोग आपकी सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी के साथ जुड़ सकते हैं?
1: वो एक तो हमें कॉन्टेक्ट करें और बताएं कि वो किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में करना चाहते हैं, फंड रेजिंग में करना चाहते हैं, और कमिटमेंट बहुत जरूरी है। हम पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं कि आपको किसने प्रेरित किया, कईयों के तो मदर को था, ऐसे था, ऐसे लोग बहुत सिंसियरली काम करते हैं, मगर दूसरे भी हैं जो जिनको मन से ही दूसरों का हेल्प करने की होती है, तो वो पता लग जाता है कि कौन रुकेगा और कौन आते, तो हर मीटिंग में 2-3 नए आ जाते हैं कि हम हेल्प करना चाहते हैं, मगर जो कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट होती है वो उसमें से कम होते हैं, पर हैं, ऐसी बात नहीं है
0: जी।
1: कई लोग 27 साल हो गए तब से जुड़े हुए हैं हमारे से, तब यंग थे, अब 80 इयर्स के हो गए हैं फिर भी हॉस्पिटल जाते हैं
0: रेगुलरली। जज्बा देखिए कितना,
1: जज्बा तो बहुत,
0: उनके जज्बे को सलाम है। 80 साल के होने के बावजूद वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, उनकी सहायता के लिए अस्पताल जाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं।
1: हाँ।
0: तो रेणु जी, जब किसी व्यक्ति को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो सहायता लेने के लिए आपकी सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे ब्रोशर में हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और अगर PGI या 32 से इलाज कर रहे हैं तो वो डॉक्टर्स को कह सकते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, तो डॉक्टर्स उसको करते हैं एनालाइज और हम

0: में भी बताते हैं, फिर हम डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी को दवाई नहीं देते, डॉक्टर से बात करके। और काउंसलिंग के लिए तो हम किसी को भी हम कर सकते हैं, हमारे तो कोई ना कोई वॉलंटियर को आता रहता फोन के मैं इसको काउंसलिंग कर रही हूँ, मैं इसको काउंसलिंग कर रही हूँ। तो कई बारी उनकी थैंक्स भी आते हैं कि आपने बड़ी हेल्प की हमारी उस टाइम में, हमें बड़ा सहारा मिला। तो ऐसे एक कोई थी, मतलब वो बात नहीं कर रही थी किसी से, बहुत डिप्रेस थी, तो हमारी एक वॉलंटियर गई तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तो बहुत फर्क पड़ा है, ऐसे लगा किसी एंजल ने हमें विजिट किया है।
1: जी रेनू जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप उन कैंसर पेशेंट्स को या हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी कि कैंसर के खिलाफ किस तरह से आपने जंग लड़ी और वैसे ही वो लोग भी जंग लड़े?
0: पहले तो ये है कि आप सिम्टम्स का ध्यान रखिए, अर्ली डायग्नोस का ध्यान रखिए, और स्ट्रेस फ्री लाइफ, अच्छी डाइट, टबैको से दूर रहें, और हिम्मत तो सबसे बड़ी चीज, तो मन की जो शक्ति होती है ना वो बहुत असर करती है।
1: जी रेनू जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आई, आपने शाम सुहानी कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सुनने वालों को दी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा इधर आके, ताकि मैं अपनी जो बात है बहुत लोगों तक पहुँचा सकी, और मैं ये आशा करती हूँ कि सहायता हमारी चलती रहेगी, लोगों की हेल्प से हमारे बात भी चलती रहेगी, और हम चाहते हैं कि कैंसर जो है ऐसा रिसर्च हो कि जड़ से उसका खात्मा हो जाए।
1: दोस्तों, आज शाम सुहानी कार्यक्रम में हमारी मेहमान थी चीफ आर्किटेक्ट रिटायर्ड चंडीगढ़ और प्रेसिडेंट सहायता चैरिटेबल वेलफेयर सोसाइटी श्रीमती रेनू सहगल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं मीनाक्षी कालिया। अब आज का शाम सुहानी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर

0: साक्षात्कारता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से दो दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघड़, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है तो तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। ते हुण सुनदे हैं एक फिल्मी गीत। आवाज़ है मुकेश दी ते फिल्म है आनंद।
2: मैंने

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VBG रामजी योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडूपट्टी में ITI के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग देने का आह्वान किया। और हरियाणा ने जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए तैयारियां शुरू की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। पहली जुलाई से इस मिशन के सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी रामजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी रामजी योजना 1 साथ पूरे

0: देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि वीबी जीराम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन 10% की वृद्धि की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने जो आवाज़ उठाई और जो सपना देखा उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर पूरा किया है। आज भारतीय तिरंगा कश्मीर से कन्याकुमारी तक शान से लहरा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पठानकोट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं

0: लहरा रहा है। श्री नायब सिंह सैनी आज पंजाब के पठानकोट में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा, पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश बब्बू, पूर्व विधायक सीमा कुमारी और दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पठानकोट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि भारत माता की उत्तरी सीमा है। ये बहादुर योद्धाओं, शहीदों, देशभक्तों और देश के महान सपूतों की धरती है, जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ की मिट्टी में वीरता की खुशबू और हवा में देशभक्ति की भावना है। उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ खास शख्सियतों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि उन पीढ़ियों से याद रखता है जो उनके आदर्शों को जीवन में अपनाती हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 6 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस भवन के निर्माण पर 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल से संपन्न करना बहुत जरूरी है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।
1: आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में आईटीआई का शिलान्यास हुआ है। शिक्षा के साथ साथ रोजगार बहुत जरूरी है। आईटीआई के अंदर जो बच्चे अपने अलग अलग फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं उनके लिए कौशल की शिक्षा के लिए ये सुविधा आपके गांव में दी जा रही है, जिसमें न केवल गांव बाडोपट्टी बल्कि बेवलपुर, साथ में दिनकाना, सरसों, देवरा है, इस साइड में राजली है, इस एरिए के जितने भी गांव पड़ते हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आज शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल शिक्षा बहुत जरूरी है और ताकि उसको रोजगार मिल सके। कोई भी बच्चा अगर आईटीआई करता है तो सरकारी जितना पैसा मिलता है इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बल्कि कई जगह उससे ज्यादा भी पैसा मिलता है।
0: कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को भवन के निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने आज फरीदाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करने तथा लोगों को जल संरक्षण के प्रति जन जागरण करने का आह्वान किया। वे फरीदाबाद में उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रही थी। समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, खाद्य मंत्री राजेश नागर व अन्य नेता भी मौजूद रहे। डॉ. अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया।
2: कुछ भ्रष्ट पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, उन्होंने बाहर से आए हुए घुसपैठियों की पहले आधार कार्ड बनवाए और कुछ बूथों पर उनकी वोट्स भी बन गई, तो उन लोगों को चिन्हित करना, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी को है जो भारतीय है। तो ये हमारा विधायक कौन होगा, हमारा सांसद कौन होगा, इसका तय हम सब भारतीय करेंगे। ये बाहर से आए हुए घुसपैठिए नहीं करेंगे तय कि हमारा विधायक और हमारा सांसद कौन बनेगा।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा वजीरपुर गांव के परशुराम चौक से अमृता अस्पताल तक साइकिल रैली आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। हरियाणा ने भारत की जनगणना 2027 के जनसंख्या गणना चरण के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त और हरियाणा जनगणना 2027 की नोडल अधिकारी डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में जनसंख्या गणना के पूर्व परीक्षण को अधिसूचित कर दिया है। ये क्षेत्रीय अभ्यास कल से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा

राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी ने कहा कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा का योगदान अमर है। जब अत्याचारी औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली के चांदनी चौक में हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम कर दिया गया, तब भय और आतंक का वातावरण था। ऐसे समय में बाबा लखी शाह बंजारा जी ने अद्भुत साहस दिखाया। उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन सैनी आज लाडवा में गुरुद्वारा सिंह सभा में बाबा लखी शाह बंजारा के 448वें जन्म उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल से 8 जुलाई तक मध्यम से भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। ये इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई एसटेट परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई। दो दिन तक चली इस परीक्षा में लेवल एक और लेवल दो की परीक्षा ली गई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VBGRAMJI योजना के तहत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष में पठानकोट में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर डॉ मुखर्जी का सपना पूरा किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार जिले के गांव बाडोपट्टी में ITI के भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: छुट्टी करो यार, प्लीज छुट्टी करो।
1: दूजा भी कोई मैच है,
0: यही समझ लिया यार, है कि जाना है दादाजी नूं लेके।
1: हां यार, उमर नूं जानती है तां ना लेना ही पैंदा है।
2: पर बैंकिंग विच नहीं, ਉਂਜ ਵੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਏਬਲਡ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ਤੇ।
3: ਸੀਨੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
4: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। केंद्रीय देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार के आजीविका मिशन देहाती कानून तहत राज्य में 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की थी। होशियारपुर नगर निगम के पंजाब वार्डा में आज वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग नाल हुई। शाम 4 बजे 58.9% पोलिंग दर्ज की गई। ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੱਟੀ ਦਰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। केंद्रीय देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महीने की 1 तरीक तो विकसित भारत रोजगार ते आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी कानून 2025 दे सफलता में लागू होने ते संतुष्टि जाहिर की थी। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही इस मिशन तहत राज्य ने 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता जारी की थी। श्री चौहान ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के देहाती विकास मंत्रियों नाल वीवीजी रामजी स्कीम के लागू करने की समीक्षा भी की थी। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किश्त का उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि राज्यों को लोड़ीदे फंड होने ताजो 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू करने में 3 सालों तो वध समा लग्या पर विकसित भारत जी रामजी को सिर्फ 1 दिन में देश भर में लागू किया गया। उन्होंने भी कहा कि विकसित भारत के दृष्टिकोण को तेज करने लिए इस कानून तहत अगले 5 साल में 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए तो वाधा निवेश किया जाएगा।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश

0: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਐਫਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है, घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करने लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाड़ी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो, शर्तां लागू।
0: श्रोतियो प्रोग्राम विशेष जयमाला लई करो बस थोड़ा जिहा इंतजार।

विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। भारतीय शूरवीरों के इतिहास के पन्नों को पलटें तो मोतियों से जगमगाती हमारे शूरवीरों की विजय गाथा के मोती झिलमिलाते हैं। ये आर्यावर्त के वो शूरवीर हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही बार जंगी हवाओं के रुख को मोड़ दिया। दुश्वारियों की आंधियां इन्हें डरा न सकी, दुर्गम रास्ते हौसलों को कम न कर सके। न जाने कितनी बार जाने कुर्बान भी की, फतेह का परचम लहराया। फौजी साथियों, आज हम शौर्य गाथा की इस कड़ी में सलाम करते हैं मां भारती के फरमाबरदार बेटे और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के धाकड़ सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को।

साथियों, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य पंजाब की खूबसूरत वादियों ने भला किसका दिल न जीता होगा। यहाँ के अति प्राचीन और खूबसूरत नगर जलंधर में 10 नवंबर

सन 1940 को रामकृष्ण वाधवा का जन्म हुआ। मातृभूमि की ये वही माटी है जिसने न जाने कितने ही शूरवीरों को जन्म दिया, तो नन्हे रामकृष्ण की आंखों में भी देशभक्ति का सपना झिलमिलाता था। इधर रामकृष्ण वाधवा का बचपन परवान चढ़ने लगा, तो उधर नए भारत ने अभी अभी आंखें खोली ही थीं कि दुश्मनों के सरहद पार से भारत में घुसपैठ की खबरें अक्सर सुनाई दे ही जाती थीं। उस पर रह रहकर युद्ध के बादलों का मंडराना, खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाओं में लगातार बढ़ते खतरे, जो कबाइलियों की शक्ल में भारत में घुसपैठ और खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की ताक में रहते, ऐसी असंवेदनशील परिस्थितियों ने युवा वाधवा को भी झकझोर कर रख दिया और फौज में भर्ती को लेकर उनके इरादे और पक्के होते चले गए। देश की सेवा का जज्बा इनके दिल में बढ़ता गया और फिर वो दिन भी आया जब रामकृष्ण वाधवा भारतीय फौज का हिस्सा बन गए। 2 फरवरी सन 1964 को वाधवा आर्डलरी फोर्स यानी तोपखाना बल में शामिल कर लिए गए। अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1968 में वो भारतीय सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा बन गए। सेना में उनके रणकौशल और उनकी बहादुरी का एक अलग ही मकाम था। इस तरह रामकृष्ण वाधवा बहुत जल्दी भारतीय सीमा सुरक्षा बल की अपनी टुकड़ी का एक जाना माना नाम बन गए।

सन 1947 के बंटवारे के जख्म अभी ताजा ही थे कि सरहद पार से दुश्मनों के रेंगते साए गहराने लगे। भारत से अलग हुए मुल्क यानी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की बेचैनी साफ नजर आने लगी। इससे लगी उत्तर पूर्वी सीमाओं की संवेदनशीलता को भी समझने में भारत को समय न लगा। साल 1971 के आते आते सन 1947 में हमसे अलग हुए मुल्क में गृह युद्ध के बादल अब बवंडर में बदल चुके थे। पूर्वी बंगाल में मुक्तिवाहिनी सेना ने जंग का ऐलान कर दिया था और 1971 की शुरुआत में ही पूर्वी बंगाल में स्वतंत्रता के लिए जगह जगह विद्रोह तेज हो गए। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मुक्तिवाहिनी सेना और कई स्वचालित संगठनों ने क्रांति की अलग जगा दी और ये युद्ध आर पार की स्थिति में पहुंच गया। सेना की दमनकारी नीतियों का चक्र कुछ ऐसा चला कि शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो इसकी जद में ना आया हो। भारी संख्या में पूर्वी बंगाल से लोगों का पलायन भारतीय सीमाओं में होने लगा, जैसे अक्सर युद्ध के दरमियान देखा ही जाता है। असहाय लोगों की चीखों पुकार ने भारत में भी हलचल मचा दी। इधर पूर्वी बंगाल में स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपने जोशो खरोश को बरकरार रखते हुए क्रांतिकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और 1971 के मध्य तक अपनी अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: और जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। एक समृद्ध प्रांत के हाथ से जाने का खतरा देख पूर्वी बंगाल की तत्कालीन सरकार की बौखलाहट कुछ इस तरह बढ़ी कि सभी नीतियों को ताक पर रखकर क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज की गई और मनमानी सैनिक कार्रवाई में गिरफ्तारियां और सजाए मौत भी दी गई। इधर सरहदों पर मंडराते खतरों को भांपते हुए इंडियन आर्म्ड फोर्स को सभी मोर्चों पर हाई अलर्ट पर रखा गया और चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दी गई। क्योंकि भारत की सीमाएं पूर्वी बंगाल और हमसे अलग हुए राष्ट्र से उत्तर पश्चिमी सीमाओं से मिलती थीं, इसलिए शत्रु द्वारा दोनों ही छोर से भारत पर हमले की आशंका प्रबल थी और जल्द ही ये शक यकीन में बदल गया जब हार के डर से बौखलाए दुश्मन ने 3 दिसंबर सन 1971 की शाम अचानक भारत के 11 हवाई अड्डों पर घात लगाकर हमला किया, जो दुश्मनों के ऑपरेशन चंगेज खां का एक हिस्सा था। इसे भारत पर हमला मानते हुए जवाबी कार्रवाई की गई और कई जगहों पर भारत की तरफ से भी मोर्चा बंदी की गई। बिजली की रफ्तार से हुए इस हमले में उस रात 23 लड़ाकू उड़ानें भरी गईं। 2 दिन तक ये शत्रु एयरबेस ठप रहे। अग्रिम हवाई अड्डों पर अतिरिक्त विमान भारत में उड़ान भरने को तैयार थे। ये हमला दुश्मनों को नागवार गुजरा।
1: 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वतदा।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

उधर पूर्वी बंगाल में घमासान मचा हुआ था। मुक्ति वाहिनी सेना और राष्ट्र और स्वतंत्रता के रक्षकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत सफलता हासिल की, सरकारी खजाने और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और पूर्वी बंगाल चल पड़ा अपनी असल आजादी की तरफ। भारत में न सिर्फ हवाई हमले हुए बल्कि अपनी छाती पीटता दुश्मन जमीनी हमले की फिराक में भी भारतीय सीमाओं में घुसने की कवायद करने लगा, सरहदों पर मौके तलाशने लगा। बौखलाहट में शत्रुओं ने भारत के अलग अलग मोर्चों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी कोशिश में मौका पाकर पंजाब स्थित फिरोजपुर सीमा पर ममदोह सेक्टर के पास 5 दिसंबर को राजा मोहतम चेक पोस्ट पर शत्रु ने घात लगाकर हमला कर दिया। सीमा सुरक्षा बल की इस चौकी की अहमियत बेहद खास है, जहां से शत्रु की गतिशीलता को आंका जा सकता है। देर रात अचानक हुए इस हमले और तेजी से होती चहलकदमी ने साफ कर दिया कि दुश्मनों ने फिर एक बार पीठ पर वार किया है और देखते ही देखते इस चौकी को दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसकी इत्तला भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को दी गई।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट राम कृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाढ़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हथगोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई

शत्रु अभी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान, आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया, जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग में फिरोजपुर की राजा मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल करने, कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल के जाबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

आजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
2: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर। ये आज अलार्म क्यों लगाया है?
3: आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
2: वो तो मालूम है साहब, पर आज साहब को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
2: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
2: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली, जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
2: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: वही बक बक बक बक बक बक कर रहे हो।
3: किस जंगली से पाला पड़ा है?
1: कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
2: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने मिलने आ रहा।
2: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ बैठा।
2: साहब जी
1: तुम अभी तक यही हो?
2: साहब
1: क्या है?
2: साहब वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
2: नहीं साहब आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
2: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
2: तो वो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे? तो
1: उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
2: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
2: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी साहब, वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
2: हाँ साहब हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात को जरा थोड़ा गौर करो साहब।
1: बहादुर, अरे भाई बहादुर दरवाजा खोलो यार।
3: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
1: क्या मुसीबत है।

0: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
1: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
1: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाद देर से उठेगा, शुमिम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला शाह की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
0: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
1: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
0: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
1: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रफू चलेगा।
0: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता, किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
1: मैं सब जानती हूँ, यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है। देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड, लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। क्यों?
0: अरे इसमें हंसने की क्या बात है? This is called pre-planning. हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है।
1: हाँ।
0: बहादुर, बहादुर।
2: आया साहब, आया साहब।
3: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
1: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
3: हम साहब वो आज
1: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
3: सब कुछ बता दिया?
1: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
3: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
0: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
4: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
0: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं, यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
4: नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
4: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी पर बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे ये शर्माती रहोगी हीरा साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
1: सलाम साहब।
0: सलाम
1: मैम साहब।
5: सलाम।
1: बहादुर एक तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने भी शादी नहीं बनाया।
0: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
4: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
1: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
4: होटल में साहब?
1: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
0: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
2: मैं अभी लाता हूँ साहब।
1: ठहरे बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: नहीं शाम नहीं, हम बिल्कुल नहीं शाम, हम लड़की वाले हैं शाम, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते शाम।
0: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माई बाप सब कुछ है, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझे, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
1: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप साहब से साफ साफ बात कर लो।
0: क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लड़का निहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
4: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गाँव का है साहब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की

0: को बहादुर ने देखा तो है ना।
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे।
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।
1: ना, ना, ना, ना।
0: इसमें हर्ज ही क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
2: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था शाह।
0: वो तो नजर आ रहा।
2: क्या मतलब शाह?
0: मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
2: कुछ अदला बदला नहीं शाह, कुछ अदला बदला नहीं। दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है शाह। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है शाह, कोई नुकस नहीं। हाँ, घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है शाह, घर का चूल्हा।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए, शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
2: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
2: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
2: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
1: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है। अजी पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
2: चल तू बोल दे साहब। साहब
0: देखिए, अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
2: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थू थूक दे साहब। हाँ, ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
2: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
1: साहब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था, ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
2: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
2: मतलब ये शाह कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
1: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को शाह बोल दो, शाह का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
2: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा शाह माफी देना शाह, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया शाह। चल लक्ष्मी।
3: क्या बात है शाह, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
2: बात ये मेम साहब के मेरा
1: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब, हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
4: बिल्कुल ठीक।
0: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? सब मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले, फिर बहादुर की शादी हो।
4: ये भी ठीक।
0: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
4: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
4: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
2: चलो लक्ष्मी, सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
4: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
2: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
4: अच्छा खबर नहीं, बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
2: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
4: सलाम
2: साहब।
4: सलाम।
2: सलाम मैम साहब।
0: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ा।
5: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
4: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
0: Good idea. मैं बस गया और आया।
5: मेम साहब जी, साहब किधर गया?
4: अंदर कमरे में तैयार होने।
5: अच्छा
4: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
5: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ, हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
4: अरे ठीक नहीं, हिट था बहादुर। अच्छा बहादुर, तुम दोनों को कहाँ से पकड़ना है?
5: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ, अपने मुल्क से बुलाए इनको।
4: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
5: और नहीं नहीं नहीं, नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
4: हाँ,
5: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
4: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे

बहादुर की शादी, हरि मेहरा की लिखी नाटिका भी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीति।

आइए अब सुनते हैं नीरज श्रीधर और सुजैन टिमालो की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गीत इशात कामिल का है, संगीत प्रीतम का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जो पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सर।

0: फिरोजी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

0: के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है काली चरण। गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारून और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: लाइफ बहुत तेज रफ्तार नाल चल रही है। घर बैठे आराम नाल बैंकिंग करन ले स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जिथे तुहानू मिलदा है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जेड़ा समझे तुहाडी जरूरत, देवे तुहानू स्मार्ट एडवाइस ते करे हर काम एकदम तेजी नाल। यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग ते नाल होर भी कई एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही जाओ अपनी नजदीकी बैंक शाखा च ते प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करो। शर्तां लागू।
1: आप सुन रहे हैं विविध।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: कैसी बना ये गाना?
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने भी फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
4: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
5: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए।

0: ताज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है, यह आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके।
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हम राही हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: श्रोतियों, ब्रेक तो बाद लेके आए हैं कलेरकंठ का गाया गीत, फिल्म है यार अनमुल्ले।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन

0: दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गईं। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।